पौड़ी। गुर सच्चा बदाते हो रखवाले गुर दित्ते, पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते। गुर कृपाल बेअंत अव गुण सब हते, गुरे अपनी कृपा धार अपने कर लिते। नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते। सलोक महला पहला तां की रजाए लेख्या पाए, अब क्या की जय पांडे। हुक्म हुआ हासल तदे हुए निपड़िया, हंड है जी कमांदे। महला दूजा नाक नाथ खसम हाथ किरत धके दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी। सबे गल्ला आप हाट बहालियोन, आपे रचन रचाए आपे ही काल्योन। आपे जंत उपाए आप प्रतपाल्योन, दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्योन। नानक भगतां सदा आनंद पाओ दूजा जाल्योन। सलोक महला तीजा ए मन हर जी त्याए तू, एक मन एक चित पाए। हर किया सदा सदा वडियाईया दे ना पछोताए। हों हर कै सद बलिहार ने जित सेवै।

तेन निज घर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए,

संसार अंध गहेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गाडले कंचन पारी बेद पड़े पड़ पंडित मुए।

ना जाई। हमरा भरम गया पौ भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाउ बाजीगर डंक बजाई, सब

राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले हो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया।

मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतल है मलना रहाउ लौकी अट सट तीरथ नाई

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटियाउ भा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

तह अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज कोई अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीर, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने छूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो केह लेख ना बिचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस दीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोरी।

वेदन उपज खरी पई वाकाय खद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन।

तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रह लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे गुर प्रसादी पाया जाए हर सिंह चित लागे फिर का न खाए रहाओ सच सिमरिया हुए परगास ताते बिखिया मैं।

काती कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाने गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल तोवे मुसलमान सोई मल खोवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीट है नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजन।

सुख मानी अंतर सहज सुमानी, एक अचरज जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

हर सरनाई, राम नाम राते भगत दिरड़ाई, भगत करे जन वड्याई पाई, काच रते सुख सहज समाई।

कूड़ को सात तृष्णा यज्ञ बुझाए, अंतर छात सहज सुख पाए, गुर कै भाणे चले ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए।

क्या पावा तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

मावे ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैगल मिकदारा गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई अचार चरे ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवार हों मैं।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काक्या तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काक्या तन हुनिया वै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार भवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत सा।

सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही ना जाए ते जन तन जिन एक नाम लिव लाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे हौमै विच सबकार कमाहे गुर प्रसादी हौमै जाए आपे बख्शे लए मलाए विख्या का तन बहुत अभमान अहंकार डूबै ना पावै मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोई जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे रागत नासरी महल।

फूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

हर हर उरतारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हों मैं मारी, हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी, तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ भागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी, हर कै नाम रत्ता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिख

ज्ञान लिख कीरे, तुम वड पुरख वडागी, तुम्हारी गत में तो कह ना सक है प्रभ, हम क्यों कर मिल है अभागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा, हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी, जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सद कुरबानी, हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमख पल, सब के लिख पाप लह जानी रहाव, ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी, हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जपे हो से त्रिपतानी, हर हर अमृत पी त्रिपतासे, सब लाथी भूख भुखानी, जिनके वड्डे भाग वाडी विचे, तिन हर जपे हो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। तनासरी महल

सोई पल मानुहु हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवे हो बेग बेगाली।

समझ पीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरे सतसंग पे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खत बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाथ कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म नायावह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाउ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभु चोज बडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके वास है काम तीना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े। ता सर्व

है। नित त्या यह हर पुरुष निरंजना रहाओ, जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरना।

प्यारी सब तुझ त्यावह मेरे साह ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख भंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लगी तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सब ठाई अगम रूप गिरधारी कीर्त करह सगल जन तेरे तू अबनासी पुरख मरारे ज्यों पावे त्यों राख स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी मोहल्ला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्ही त्रिपत ना पाई ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां अगाई रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटै ना भूखा।

ਪਾਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗ ਰਹੇ ਓਲਾ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਜਨ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀਨੋ ਚੋਲਾ

पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत, माया मोह भूलो अवरहित, हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहाओ, चंदन लेप होत देखो सुख गर्दभ भस्म संगीत, अमृत संग

केले वेख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन ने तर दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवा पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम।

सदा सदा तुद त्याई रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सजाए परमाई। अंध रूप रव्यो सब मदे, जत कत पेखों जाय। तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतत पावन गोसाई। कोट सुख आनंद राज पाए, मुख ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई। नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक तृपत अगाई। तनासरी महला पंजवां, जिन कीने वस अपने त्रै गुण। भवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे। क्या एहो जंत विचारा, प्रभ की ओट गही तो छूटो। साध प्रसाद हर हर हर गा।

दीठी ऐसी ठगौरी पाए पलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुरे अपने जिन ओह चलत दिखाया गूजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर लै आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु हमे अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले।

ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हियो देव अर्पों अपनो चीत रहाओ पार तन पर तन पर की निंदा इन स्यों प्रीत ना लागे संत है संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे।

मन एक है। मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रेन बांछै नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागू राम सिंह हेत सतगुर मेरा सदा सहाई।

हार बंधन काट ले हो अपने कर कभू न आवह हार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभ को आरादी नानक सद कुर्बान राग तना श्री।

काल आन संयम किसना सूजै ए जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोई जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करह विचार मुक्त पाई साध संगत दिन सजाए अंधार चरण कमल आधार।

रहाओ साध की शोभा आत्म चकीनी संत वडाई हर जस चीनी आनंद संतन कै भगत गोविंद सुख संतन कै बिनसी चिंद जह साध संतन होवै एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह आनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक करा।

जाकी रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

जन को प्रभे अपने का तान। जो तू करह करावह स्वामी, सा मसलत प्रवान रहाव। पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी। चरण सरन नानक दास हर, हर संति ए बिद जाती। तनासरी महला पंजवां, सगल मनोरथ प्रभ ते पाए। कंठ लाए गुर राखे, संसार सागर मह जलन ना दीने। किनै ना दुत्तर भाखे,

अराध हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजै तनासरी महल।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक है निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा पौजल तारी रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी

टेक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जल पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई संत अनुग्रह पय मन निर्मल नानक हर गुण गाय तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस ताक जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाय।

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਤਨ ਕਰੈ ਮਨੁੱਖ ਡਹਕਾਵੈ ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ।

जिस जन कै पालै सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवा नेत्र पनीत भय दर्श पेखे माथै परों रवाल रस रस

कल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल, हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवा, अपनी उकत खिलावै भोजन, अपनी उकत खिलावै सर्ब सुख भोग रस देवै।

नानक हर राखी पाती तलासरी महला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझ ते निवरह प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओहो तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हरनीत मरार सहाय हो दा।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख।

काल सर्ब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिस कै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार।

नानक उदरे प्रभ सरनाय तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ कोई होआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम ते आया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

हरदे वनहारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती ये है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्बनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। पोहप मद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहो निध पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस, हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे,

आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल पै काटन हारे हो मैं मार मिले भगत हारी अनक जतन कर काल संताए मरन लखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवे आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवे कहतो पढ़तो सुनतो एक तीर्ज धर्म तरनी तर टेक जत सत संयम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर कै शब्द भरम पौ भागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप तनासरी।

मिलै मलाई। आप दिखावै आपे देखै, हाथ ना पतीजै ना बहु भेखै। कड़ भांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया। पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवह जाहे। नाम जपै पहु भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बन वासा, परमत डोलत भये उदासा। मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए। आचारा विचार शरीर, आद जगाद सहज मन धीर। पल पंकज महकोट उधारी।

आप पूरा नामण गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एके वडे आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी भरपुर रहे सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा।

लेखै आपे सुरत बुझाई। नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई। तुम सारे अवर ना कोए आया जायसी जियो। हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच में।

गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरे बड़े आई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो एक साहिब दोए राह बाद वजंदिया जियो दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बेखलादी सिर भारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सियापै साचा सिर जनहारा भगत सोह दरबार शब्द सुहाया जियो बोल है अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसे पारस होए जां तेरे मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी भूख प्यासो आत क्यों दर जाए सा जियो सतगुरु पूछो जाए नाम त्याए सा जियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन।

बिना वसारी अन दिन संहारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृपतै गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरै अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरै सत संगत मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जियो अन दिन रह निब लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा जागे अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे सत संगत मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहया जियो माया दुख मोहया हो मैं रोहया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को सात न चाले पुत्र कलत्र माया धोया दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहया जियो कर किरपाले हो मलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन भावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रह दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन भावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जियो नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जियो अमृत हर का नाम साध संग रावी है जियो पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, चार वेद अर सिमरत पुराना, कमला पत कबला नहीं जाना, कह कबीर सो पर मैं नाही, पग लग राम रह सरनाही, दिन ते पहर पहर ते घड़िया, आप कटे तन सीजै, काल अहेरी फिरे बदक ज्यो, कहो कवन बिध कीजै, सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो को है काका रहाउ, जब लग जोत काया मह बरतै, तो कवन बिध कीजै, सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो को है काका रहाउ, जब लग जोत काया मह बरतै, आपा पशु ना बूझै, लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कशु

पूछे तप कर बहुर ऐबू, या मांगू किस थिर नाही। राम नाम रख मन माही रहाउ, सोभा राज बिभै बढ़ियाई। अंत न काहू संग सहाय, पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया। इन्ते कहो कमने सुख पाया, कहत कबीर अवर नहीं कामा। हमरे मन धन राम को नामा, राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाउ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इन मैं कछ नाही तेरू काल अब दे आई। अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने, तेहू पुत्र पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई। ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम ले ही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर सने। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गहरी करके नीम खुदाई, ऊपर मंडप छाई। मार कंडे ते को अधकाई, जिन त्रिण धर मूंड बलाई। हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो। बिन सजाए झूठी देही रहाओ, मेरी मेरी कैरो करते। दुर्योधन से पाई, बारह योजन शत्र चले था। देही गिरजन खाई, सर्ब सोइन की लंका होती। रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी। खिन मैं पई पराई, दुर्बासा स्यो करत ठगौरी। जादव ए फल पाए, कृपा करी जने अपने ऊपर। नाम देओ हर गुण गाय, दस बैरागन मोहे बस कीनी। पंचों का मिट नामो, सत्तर दोए परे अमृत सार। बिख को मार कढावो, पाछे बहुर ना आवन पावो। अमृत बाणी घट ते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ। वज्र कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो। ए संसार ते तब ही

माया नह लपटाव माया नाम गर्भ जोन का तेह तज दर्शन पाव इत कर भगत करह जो जन तिन भव सगल चुकाइय कहत नाम देव बाहर क्या भरमोह एह संजम हर पाइय मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो करंक निस नाद बाल।

ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यो तरनी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू दीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर, मोर मन मान जन को पूर्ण दीजै, हो बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल।

ज्योत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझह क्या अर्पों नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठसठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सं

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सारग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरुण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ प्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठीट सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीट सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साजे।

सतगुरु हुए लखावे धन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवारता रहाऊ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका गौ

गुर साधु मिल साधु कपट खला न रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा माया भुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़बा मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखबा रहाउ धन तन वड भाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लागबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाई जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवह हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

कृपाल कृपा प्रभ धारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइय सतगुर महजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उतारियो मन महजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जय श्री महला चौथा सतसंगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत धार।

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिले प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा मन

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाह, हर हर हर जस घूमर पावहु, मिल सत

गुर मिले हर ओ महाराम कर कीरत जस अगम अथाह खिन खिन राम नाम गावाह मोको तार कृपा मिलिए गुरदाती हर नानक भगत ओ महाराम जैत श्री महला चौथा रस रस राम रसाल सलाह मन राम नाम पीना लैलाह खिन खिन भगत करह दिन राती गुरमत भगत महाराम हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द लैलाहा गुरमत पंच दूत वस आवह मन तन हर ओ महाराम नाम रतन हर नाम।

अवस्था मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन

अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय

तनी भूमन चतुरांगा संग न चालियो इन मह कछुऐ ऊठ सदायो नांगा हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइय नानक इहां सुख आगे मुख उज्जल संग संतन कह पाइय जैत श्री महला पंजवा कर तीजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

को कहतो सब बाहर बाहर, को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसै चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बुझहियो, सर्व निवासी घट घट वासी, लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसहियो, जय श्री महला पंजवां, तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरों पेख प्रभ को नीरो, बेशमार बेअंत बड दाता, मने गिहीरों पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आसा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरों बुझ प्रभ को, जय श्री महला पंजवा, लड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके,

साधु पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुरु आज्ञ, तजी सियानप चिंतव सारी, भंग छोड्यो है त्याग रहाव। जाओ देखो तो सगल मोहे मोहियो, तो शरण परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो, तो जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को, जो संत भेटे वड भाग। जन नानक सर्व सुख पाई, मोरो हर चरणी चित लाग। जय श्री महला पंजवां, मन मह सतगुर ध्यान धरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा, प्रभ जियो मया करा रहाऊ। काल जाल अर महा जंजाला, छुटके जमह डरा। आयो दुख हरन सरन करुणा पत, गहयो चरण आसरा। नाव रूप भयो साध संग, भव निद पार परा। अपयो पियो गत थियो परमा, कहो नानक अजर जरा।

तिनकै संग नानक निस करियै जिन रस रस हर गुण गाई। जय श्री महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी, अंधियारे मह दीप रहाउ, सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम, चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन, मनह चिराव हो धूप, हार परयो तुमरै प्रभ द्वारे, दृढ़ कर गए।

या रसम है मगन हूत कृपाती महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवं तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चातरक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ धारु हर प्रेम भगत को रब नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चातरक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ धारु हर प्रेम।

लाड़दास जाने अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जैत श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किस नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भज

दहदिस को उठताया घट ही भीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया नाहिन गुण नाहिन कश जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परयो शरनागत अपै दान प्रभ दीजै जैत श्री महल्ला।

को जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवां संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल भी ना करीजै।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय हबे सखियां मुँह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हों तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किसनी शीशंदा यार वे तैरा व्या लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हों किदी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता

आई महामंगल रहस थिया फिर दयाल साधना वरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रय अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री महल।

असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिय मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी घूलिय लूक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया धारो हो काड पव जल फेरिया सलोक नित ना पवै असंख गुण

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है।

पूर सोए जल थल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुण ताके क्या गनी भज सरन स्वामी सुखागामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत।

जवान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एहे करत बिहावे, उज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूत है जिथिया, किरत कर्म ना मिटै नानक हर नाम धन नहीं खटिया, उदम कर है अनेक हर नाम ना गावही, भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही, पशु पंखी सैल तरवर गणक कशु ना आवे, बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे, रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही, बिनवंत नानक भरम है परमाए खिन एक टिकन ना पावही, जोबन गया बतीत जर मल बैठिया, कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया, नह नैन दीसै बिन भजन ईसै छोड़ माया चालिया, कहया ना मन है सिर खाक छन है, जिन संग मन तन जालिया, श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह उठिया, बिनवंत नानक कोट कागर बिनस बार ना झूठिया, चरण कमल सरण आए नानक आया, दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया, मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया, हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

अर्थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं। मुख तले पैरे उपरे बसंदो कोहतड़ै थाए। नानक सो तनी क्यों वसारियो उदर है जिस दै नाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार। उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार। बिकम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जासह जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है। खंडन कल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। हब रंग मान है जिस संग तैस्यो लाइय नेहो। सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटुंब जतन करनं माया अनेक उदम है

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, विसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाउ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

परवान जित मलंदड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप।

पाईऐ वड्डै पुन्न आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक दया करन दुख हरन उचरन नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जहां प्रभ भय दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल भय शरीर जन धूरी नाया ना।

0: गोपाल गुर
1: गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगियां पौड़ी तन तन गुर देव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब पई ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे।

काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचया

गुरप्रसाद। राग टोडी महला चौथा घर पहला, हर बिन रह ना सकै मन मेरा। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले, बहुर न भवजन फेरा रहाउ। मेरे हियरै लोच लगी प्रभ केरी, हर नैन हो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, हर

यह तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्त।

बाद संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वशल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवां मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज सिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया कर आभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया।

प्रभ को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां कृपा निध बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै, आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद।

पंजवां सतगुरे आयो सरन तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाऊ।

सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे

किस नाही रब राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याऊ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाउ रहाउ तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन ना को लागे जाकी।

सब किस किस के ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंग।

आयो रे महाराज रो गाथ बाहु स्यो लुबड़ियो नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिख्याते गुर को शब्द मेरे ही अरे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो प्रेम गह्यो मोहे हर रंग पीन पेखियो लालन पाठ बीच खोए अनद चिता हर खे पतीन तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

बिसर नहीं निम कही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारु प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे सम

हम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगढ़ चतुर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म

शल तृण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राते जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ, गुण गावत अच्युत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे, अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवां, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपुरा भेट्यो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काढ लियो जाने अपना, बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा, नानक शरण गही।

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवै हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम धेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाउ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत बिचारी गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई।

नहीं कबहू होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरे खजूर काए रे बकबाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ पंडित होए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै पैसर मातै सींग गो देवल मदे लीग आसै लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुनायो धन माया संपै तिस देव जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर भेटे स्वामी दुख हमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो किसी

निस्तारा। कोटक तंत्र के पाप सब खोवे, हर पवजल पार उतारा रहाउ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निर्भव निर्वैर निरंकारा। हर निकट बसत कस नदर ना आवे, हर लादा गुर विचारा। हर आपे साहु सराफ रतन हीरा, हर आप की आपा सारा। नानक जिस कृपा करे, सो हर नाम विहाजे। सो साहु सच्चा बणजारा। बैराड़ी महला चौथा, जप मान हर निरंजन निरंकारा। सदा सदा हर त्याय सुखदा।

प्रेमान हरियंत शडावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहु नमस्कारा।

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा,

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे नाने की कार करदम मम ईचनी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए, रहाउ केसर कुसुम मृग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता जोत अनेही, सर्वे परमल करना, के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होई, तेरे नाम निवे रहे लिव लाई, नानक तिन दर भीख्या पाई, तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इहु तन माया पाहया प्यारी, लीतड़ा लभ रंगाई।

काया कपड़ टोक टोक होसी, हिंदू सतान संभाल सी बोला, आवन अठहत्तर जान सतानवे, होर पी उठसी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला, तलंग महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब आए हुक्म खसमा हो हुक्म सब वर्तनी, सच साहिब साचा खेल सब हर तनी, सलाह हो सच सब ऊपर हर तनी, जिस नाही कोई शरीक, किस लेखै हो गनी रहाओ, पौन पानी धरती आकाश, घर मंदर हर बनी, विच वरतै नानक आप, झूठ कहो क्या गनी, तलंग महला चौथा, नित नेफल कर्म कमाए बफावै दुर्मतिया, जब आणै बलवंच कर झूठ, तब जाणै जग जितिया, ऐसा बाजी सहसार, ना चेतै हर नाम, खिन मह बिनसै सब झूठ, मेरे मन त्याए रामा रहाउ, सावेला चित ना आवै, जित आई कंटक काल ग्रसै, तिस नानक लए छडाई, जिस कृपा कर हृदय वसै, तलंग महला पंजवा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खाक नूर करदम आलम दुनियाए, असमान जिमी दरखत आब, पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदंग फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी, गाफल हवाए रहाओ, गैबान हैवान हराम कुस्तनी, मुर्दार बखोराए, दिल कब्ज कब्जा कादरू, दूजक सजाए, वली नियामत बिरादरा, दरबार मिलक खानाए, जब अजराइल बस्तनी, तब चेकारे बिदाई, हो आलमलूम करदं, पाक अल्लाह, बुगो नानक अरदास, पेश दरवेश बंदा, तलंग घर दूजा।

तू है तू होनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, जो तुद सेव है तिन पहो दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाही, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप, सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होई, जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत

कर तीजा करते कुदरते मुसताक दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहाओ खिन माहे थाप उथापदा आचर्य तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मह दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह।

सगले आपू तेरे जन देखे दीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम गुर मिल नानक बूझिया।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौ काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बिहार।

भजन ते निर्भय पद पावे तलंग महला नौ जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफल सोया जो तन उपजया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ मात पिता सुत बंद जन हित जां स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौ तुम जानो नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो।

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कतेब इफतरा पाई दिल का फिकर ना जाय टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाई बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए ये जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना ही रहाओ दरोग पड़ पड़ खुशी हुए बेखबर बाद बकाए हक सच खालक खलक मियानी स्याम मूरत नाए असमान मियानी लिहंग दरिया गुसल

हम आराध्या गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम के मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के गुर तुठे मन पर बोधया हर पिया रस गट के रहाओ सत संगत उत्तम सत गुर केरी गुण गावे हर प्रभ के हर कृपा धार मेलो सत संगत हम तो वह पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाथी तिस तिस के हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचो सिर गुर के जन नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो लाज जन के सुई महला चौथा हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलगा पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी हर अस्तर सेव सुख समगा मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ नरपत राजे रंग रस मान है बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हाथ फलगा हर राख राख जन किरमत मारी सरनागत पुरख प्रत पलगा दर्शन संत देहो सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुमगा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोको की जय दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विट्टो सद घुमगा।

हर हर कर है नित कपट कमाव है, हृदय शुद्ध ना हुई, अन दिन कर्म कर है बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई, ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा, मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना, दूजे पाए खुआई।

नीच जात हर जपतिया उत्तम पदवी पाई, पुछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया घर जिस जाई। हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाय रहाउ। रविदास चमार पुस्तक करे हर कीरत निमख एक गाय, अतत जात उत्तम भया चार वर्ण पए पागे आए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोक शीपा कह बलाय, खतरी ब्राह्मण पेठ दे छोडे हर नाम दे लिया मुख लाय। जितने भगत हर सेवका मुख अठ सत तीरथ तिन तिलक कढ़ाय, जन नानक तिन को अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय। सूही महला चौथा तिनी अंतर हर अराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा तिनकी बखीली कोई क्या करे। जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाउ। तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे किस हलत पलत।

इशारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया न जाई हर तन संचिय भाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटिए होरत है होरत उपाय हर तन कितै ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन धन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर धन लया ना जाई हर धन रतन जवे।

का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही हलत पलत हर तनै की भगतां को मिली वडियाई हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा इहो हर धन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है किसे का गवाया ना जाई हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी जम जा गाती डंड ना लगाई साखती पाप करके बिखिया धन संचिया तिना एक विख नाल ना जाई हलते विच साकत दहेले पए हथों छुड़क गया अगे पलत साकत हर दरगाह ढोई ना पाई इस हर धन का साहु हर आप है संतो जिसनों दे सो हर धन लद चलाई इस

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

त्यों नानक साध जना जगत्यान सब पैरी पाई। सूही महला चौथा तू करता सब किसे आप ही जान है। क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझे। जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है। बुरा भला तुद सब किस सूझे। तुद भावे तिवें बला वह रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुख धंध पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना।

अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाए मेरे राम हर जन अरोग पये गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हम मैं रोग गए रहाओ ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण रोगी विच हम मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई हम मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन को हौ बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो

खुद श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै। इकना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मनमुख करह से रोवै। हर की वडियाई हौ आख ना साका, हौ

ओंकारा कमल रूप दृष्टियो बिन सायु कतह गयो ओह कातते आयु रहाउ जलते उठह अनक तरंगा।

परम गत होई सूही महला पंजवा कीता लोड़ है सो प्रभ होई तुझ बिन दूजा नाही कोई जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की राखो लाज तेरी सरन पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाउ जल थल महियल रहया परपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पतियारे कछु ना पाइय साच लगे ता हमें जाइए जिसनो लाए ले सो लागे ज्ञान रतन अंतर तिस जागे दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम त्याए दुए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ता आण है रास कर कृपा अपनी भगती लाई जन नानक प्रभ सदा त्याए सूही महला पंजवा तन सुहागन जो प्रभु।

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया, सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरयो देखो प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई, भ्रम भ्रम आयो।

पिंड सब थारी लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन कहो हम बारी रहाओ प्रभ दाता मोहे दीन पेखारी।

देखते अंधे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मुहे साध संग दी जय तो किस पाई जो।

प्यारी तामह वासह भगत प्यारी सहज कथा प्रभ की अत मीठी विरले काहू नेत्र हो डीठी रहाउ तह गीत नाद अखारी संगा ऊहा संत करह हर रंगा तह मरन ना जीवन सोग ना हरखा साच नाम की अमृत वरखा गोज कथा एह गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जा कै दर्श पाप कोट उतारी भेट तसंग इहो भव जल तारी ओए साजन ओए मीत प्यारी जो हम कहो हर नाम चितारी रहाउ जा का शब्द सुनत सुख सारी जा की टहल जमदूत बदारी जा की तीरक इस मन है सधारी।

कूड़ा मोहे लपत लपताना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना, कृपा निदान नानक कहो करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा, घट घट अंतर तुम्हें बसारी, सगल समग्री सूत तुम्हारी, तू प्रीतम तू प्राण आधारी, तुम ही पेख पेख मन बिगसारी, रहा अनक जोन भ्रम भ्रम भ्रम हारी, ओट गही अब साध संगारी, अगम अगोचर अलाखे अपारी, नानक सिमरै दिन रै नारी। सूही महला पंजवा, कमन काज माया वड़ियाई, जा कहो बिन सतबार ना काई, इह सुपना सोवत नहीं जाने, अचेत व्यवस्था मह लपटाने, रहाउ महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊठ सधारा, ऊचते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बनाहे अपारा, दूसर

पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिया मिल साधु हर नाम उच्चरिया रहाओ एक बिना दूजा नहीं जाने घट घट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किस करे सोई पल माने आद अंत की कीमत जाने कहो नानक तिस जन बलिहारी।

गुर के चरण कमल मन त्याई, दुख दर्द इस तन ते जाए रहाओ। पव जल डूबत सतगुर काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत। सतगुर की रेन वड भागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे। सूही महला पंजवां, गुर अपने ऊपर बल जाइए। आठ पैर हर हर जस गाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी। सगल कटा का अंतर जामी रहाओ, चरण कमल स्यों लागी प्रीत। साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसे मन माही। जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। नानक मांगे संतर वाला, सुई महला पंजवां।

अपनी शरण राख प्रभ दाती, गुर प्रसाद किन विरले जाती। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल।

दूर बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभु चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छड़ाई लियो जन अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए।

राम आहार पूदाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना तारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे पाज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं तारत परन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी शरण समराते अगोचर स्वामी उधर नानक प्रभ अंतर जामी सूही महला पंजवा साध संग तरै भय सागर हर हर नाम सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिनसे गुरपूरे मिल पाप तजायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखत होए ता

आस हर से राते राम रसायण अन दिन माते बाहां पकड़ प्रभ आपे काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल कर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु ते आए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की पासी।

पंजवां दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परमाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सूही महला पंजवां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाए कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाए पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताए नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाठ पटंबर बिरथिया जेह रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवां हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा पाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निध पाई।

गुण हरिया सर गुण धरिया अनक कोठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहो विद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहोर नाम।

करनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाऊ महा दुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गृह अंध को पाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बे

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई।

करते का निमक सिमरत जित छूटै संतो हो सागर पार उतरिय जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरिय रहाओ कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रीजै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चौह वरना को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह घट घट

जल थल महल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुए, तिन हर

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाई परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता टेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवां।

पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरह सो मर जाई दयाल हो वह जिस ऊपर करती।

चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कहो बल जाई। अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई। जिसनो लाए लह सो लागै,

स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटै कोई सतगुर का दिलासा नाम त्याइन सुख फल पाइन आठ पैर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सबते वड्डा सत

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई।

निद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया, भणत नानक सहो है पी होसी, जय पावै प्यारा तैरै वेसी, सूही महला पहला कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जी हो, विण नावै भ्रम भुलिया।

ये भवै है बिन भागा धन नाही जियो अवगण मुठी जे फिर है बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उप

सै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भाव सी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गाव सी सूही महला पहला ज्यों आरन लोहा पाए भन कढ़ाई है ज्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझे रजाए शब्द कमाई है।

देही होवग खाक पमन उड़ाई एहो कित्थे घर औताक महल ना पाई देहो दीवी अंध कोर कब महाई गर्भ मुसे घर चोर किस रुआई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रहे निह काम जे गुरमत पाई है रात देह हर नाम मन वसाई है नानक मेल मलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम वसार एहन सत्याई है जो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखालिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावे तिवें रजाए परम पौ भंजना जन्मत ही दुख

निवाजिया, आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया, देही पसमर लाए ना जापी कह गया, आपे रहया समाए सो विस्माद भया, तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख।

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे बिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा साचा शब्द सुनाई, गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाई, मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए, सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नातै मल जाए, सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मन लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुर ते पाए, तन मन सब किश हर तिस केरा, दुरमत

राखी तृष्णा अग्न बुझाए, गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहिया समाए। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै भाई।

कोई अमृत भरे भरपूर है, ओना तिल ना तमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेसेन, सेवड भागी जे ओना मिल रहे, अन बिन नाम लेन, देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी, एको है दातार सच्चा आप धनी, सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेल लए, सो प्रभ सदा संभाल, मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलया जाए,

साच रखा उर तार, मिलिया हुए न विछड़ गुर कै हेत प्यार। फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार, मिल प्रीतम सुख पाया सोभावंती नार। मन मुख मन न भिजई हत मैले चित कठोर, सप्पै दुध पी आई अंदर विस निकोर। आप करे किसे आखिए आपे बख्शन हार, गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिंगार। सच्चा साहु सच्चे बन जारी उते कूड़े ना टिकन, उन्ना सच ना पावे दुख ही माही पचन। हम मैला जग फिरै

आगै धरी विचो आप गवाए खिंचो तान विगुची है एक सस्यों लिवलाए हौ मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पाहेरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़ है दर सच्चा दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण वेकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजै सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोयना रूपा पाप कर कर संची है चलै ना चल दिया नाल मिण नावै नाल ना चल सी।

खुट है गुरमुख निब है नाल ये मन मूलों भुलिया जस है पत गवाई एहो जगत मोहे दूजे व्यापिया गुरमती सच त्याय हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाय गुर कै शब्द मन तन रपै।

मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर स्यों केन करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग में विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार न मन हर गुण सदा रवन रहाव गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होऐ लिखिया गुर भाणा मन लेन वडभागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाहि समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुरचरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौं तिस पह आप बचाई दर्शन हर देखन कह ताई कृपा करह ता सतगुर मेलह हर हर नाम त्याई रहाव जे सुख दे ता तुझह अरादी दुख पी तुझह त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सूख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग

देव है माए, मैं धर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए। अकथ कहानी प्रेम की को प्रीतम आखे आए।

अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां कर नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिन जिथिया मन रहसी है क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो, तिन स्यों प्रीत ना।

पाई है। ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरे सो मर जम्मै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा, जिन मन बुठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वर है, बिनसे सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार, तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्वमय, तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां का

दाथड़ी नित हृदय रखा संभाल पाम जलाई पंध तौ नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुर जीवै कृपाल किती लख करोड़ प्रिये रोम ना पुजन तेरिया तू साही हू साह हों कह ना सका गुण तेरिया सहिया तौ असंख मन्यो आप वधानिया एक पूरी नदर निहाल देह दर्श रंग मानिया जय जिथे मन धीरी है किले विख मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे आपर पूरे हुए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुन्निया सुख ना पायन मूल नाम विशुन्निया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया धंधिया सोदत सोदत सोद तत बिचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाहि अनेक मर मर जन्म ते बिन बूजे सब वाद जोनी भरम ते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे विसर नाही दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अम्मा वन डोसड़े हों क्यों सहो रावण जाऊं जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाऊं जियो जिन्नी सखी सहो रावया

हाँ क्या क्या कि ना तेरा नाओ जियो इकत ढोल ना अंबड़ा हाँ सद कुरबान है तेरे जाऊं जियो सोना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरा आस जियो हाँ एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुरनिया बाग बेठे आए जियो सात अन चली सोहरे क्या मुंह देसी अगे जाए जियो सुती सुती झाल किया भुली वाटड़ी आस जियो तै सह नालो मुतीस दुखा को त्रियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सुहागनी मैं दुहागन।

आए जियो, सोई दस पदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो, एहो मन तै कू देवसा, मैं मार्ग देहो बताए।

चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

साध हम कर साजने आए साचै मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी हम

ज्ञान सोहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

अनीता हों बलिहारी साजना मीता अवरीता गुणा का हुए वासला कड वासली जय जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुणह केरी छोड़ अवगण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए जिथे जाए बहिए भला कहिए झोल अमृत पीजे गुणा का हुए वासुला कड वास लीजे आप करे किस आखिए होर करे ना कोई आखण ता को जाइए जे भूलड़ा होई जे होए भूला जाए कहिए आप करता क्यों भुले सुने देखे बाज कहे दान अणमंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई।

त्रिपट अगाही हर गुण गाए सदा त्रिपतासी फिर भूख ना लागे आई दह दिस पूज होए हर जन की जो हर हर नाम त्याई ना

सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम, सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम, फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई, हम मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे शब्द समावे, अंतर एको जानिया, गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई, नानक कामन पिर रावे अपना, रव रहे आ प्रभ सोई, गुर की कार करे धन बालड़िए।

सच समाए सच वरतै सब थाई सच्चा श्रृंगार करे दिन राती कामन सच समाए हर सुख दाता शब्द।

गुरमती घट चानन होआ। प्रभ रब रहिया सब थाई राम, प्रभ रब रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हउमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानके।

शब्द रव हो, अन दिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावो नारी, अन दिन भगत करह गुर आगै, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसिया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आई, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर गुण गाए राम, निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए, हर की अमृत बाणी, जिन मन वसिया से जन निस्तरे, घट घट शब्द सुमाणी, तेरे गुण गाव है सहज समाव है, शब्दे मेल मलाए, नानक सफल जन्म तिन केरा, जे सतगुर हर मार्ग पाए, संत संगत सियो मेल भया, हर हर नाम समाए राम, गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये,

दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावह रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करह दा।

सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम, हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई, सा धन कंत पिया।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम। तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए। अन दिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गवाए। गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती।

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा धारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जां प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

ताटकटे सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजन हारो वडभागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो घट घटे सब

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा, विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा, हर हर आनंद पया दिन राती, नानक हर मीठ लगाए, गुर सेवन सतगुर दाता, हर हर नाम समाए, राग सूही महला चौथा, शंत कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर पुरख मलाए अवगण विकना, गुण रवां बलराम जीओ, हर हर नाम ते आए,

परम गत पाई, पंच मेले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाथी, पाखंड भरम गवाया हों मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत पये शरीरा गुर प्रसादी।

भेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुरु पूरा आराध हो सब किल विख पाप गुआया सहज आनंद हुआ बड़ भागी

संत जना हर मेल हर पाया, बड भागिया बलराम जीओ, निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी, संत जना बड भागी पाया, हर कथिया अकथ कहानी, हृदय हर हर हर धुन उपजी, हर जपिए मस्तक भाग जियो, जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजे मन बैराग जियो, हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई, मन चिंदिया।

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सुई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सहज सुपाए। अन दिन भोग भोगे सुख सोवै, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुर पूरा पाई, अन दिन नाम त्याए। सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए। निर्मल जल नाए मैल गवाए, भये पवित्र शरीरा। दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी। हर नाम प्यारे शब्द निस्तारी, अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कह सोई पर की जय, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहण आया। व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

आवहु संत जन हो गुण गाव है गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाज्य है शब्द कनेरे राम शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई।

पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवे रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सहज समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लए मलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहनस नाम त्याए एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई

गर्भ गवानो निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिया भौजल तरिय जे थीवै कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानो नानक सरन पया हर द्वार हो बल बल सद कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिन्नी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाना सद कुरबाना सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम।

रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुर पूरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो, गुण गोविंद गाओ नित नित,

मूर्ख नासे, रहस उपजै मन घणा, मन तन निर्मल देख दर्शन, नाम प्रभ का मुख भणा, होए रेण साधु प्रभ आराधु, अपने प्रभ पावा, बिनवंत नानक दया धारहु, सदा हर गुण गावा, गुर मिल सागर तरिया, हर चरण जपत निस तरिया, हर चरण त्याए सब फल पाए, मिटे आमन जाना, पाए भगत सुपाए हर जप, अपने प्रभ पावा, जप एक अलख अपार पूर्ण, तिस बिना नहीं कोई, बिनवंत नानक गुर परम खोया, जत देखा तत सोई, पतत पावन हर नामा, पूर्ण संत जना के कामा, गुर संत पाया प्रभ त्याया, सगल इच्छा पुनिया, हों ताप बिन से सदा

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दास दासी, मन मौल तन हरिया। नानक था

लीवन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाईए जित मिले प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइए प्रभु त्याईए बहुड़ जोन ना आईए गुर चरणी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाईए हर गुण नित गाए नाम त्याई।

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया ही राम संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाई राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा धारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो।

सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अबनासी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल कल मही अल पूर।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिय है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटियै काल की फासी राम कटियै जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपियै दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिय है अवनासी करोड़।

प्रभु परसे हर राया राम, मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम, गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाइया गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वाधाइया करी नदर स्वामी सुखागामी, हलत पलत सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिया, जियो पिंड जिन तारिया सूही महला पंजवा, पै सागरो पै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम, बोह थड़ा हर चरण अरादे मिल सत गुर पार लंघाए राम, गुर शब्दी तरिये बहुड़ ना मरिये चूके आवन जाना, जो किश करे सोई भल मानो तां मन सहज समाना, दुख ना भूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरनी पाई, हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मटाई, संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम, आपनड़ा मन आगे धरिया सर्बस ठाकुर दीने राम, कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदर थित पाई, अणद बनोद सिमरहु प्रब साचा विछड़ कबहू ना जाई, सावड़ भागन सदा सुहागन राम नाम गुण चीने, कहो नानक रवह रंग राते प्रेम महारस पीने, आनंद बनोद पए नित सखिए मंगल सदा हमारे राम, आप नड़ै प्रभ आप शिंगारी शोभावंती नारे राम, सहज सुभाए पए कृपाला गुण अवगुण ना बीचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उरतारिया, मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारी, कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारी, गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार त्याए राम, जप एक प्रभु अनेक रविया सर्ब मंडल छाया, ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया, जल थल महियल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए, पेख दर्शन नानक बिगसे आप लय मलाए, सूही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप वसाया राम करते आप वसाया सर्ब सुख पाया, पुत भाई सिख बिगासे गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सोहाया, कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम अरादह कटिए जम की फासी राम, काटी जम फासी प्रभ अवनासी हर हर नाम त्याए, सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए, संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नासी, शब्द सवारे सतगुर पूरे नानक सद बल जासी, दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े।

अनहद चोज भगत पव भंजन अनहद वाजे धुनियै राम अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ठ नित होवै हर नाम अराध है मैल सब काट है किलविक सगले खोवै तह जन्म ना मरना आवन जाना बहुड़ ना पाईऐ जुनी है नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद

गोविंद अनद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

कीजै बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट

पूर्ण भगवान अवगण को नाच तारी, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काली, कट कट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जे बड़े अमर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल थल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पव जल

प्राण आधार, गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचार, मिल साधु दीना ता नाम लीना, जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे, हम मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर, राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई, हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी, हर निश्चल सो

अर्पाया सब आत्रुव डिथे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौ तिसकी दासी मरै न आवै जाई धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच पुजाई श्रुत सिमरत गुण गावह करती सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूह वेश दुहागणी पर फिर रावण

सच्ची धर्मशाला आप उपाय खपाएंदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संवाहेंदा तेरा हुक्म नराला आपे आप वर्तदा आपे प्रतपाला। श्लोक महला तीजा सुहबता सुहागनी जा मन लै है सच नाम।

खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीत सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित

लाल हुआ रसना रती गुण सार, सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार, नानक करमी महल पाया।

मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता हउ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिर उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मरिया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन महला तीजा कंता नाल मेहदियां सेती अग जलाहे जे जान है तेरे अपना तां तन दुख सहाहे नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे भावै जीवो कै मरो दूरो ही भज जाहे पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करतै लिखिया नावै जेवड होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया नाम अखुट निदान है गुरमुख मन वसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक भाए से जन मिले जिन हर जप जपिया जप

नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम उरतारी कोठे मंडप बाड़िया लग पए गावारी जिन किए तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्चिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन पिर मन मानिया तो बनिया शिंगार किया तो प्रवान है जा सहो धरे प्यार पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार सीजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग सियो हम मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर वेल वर्ष वराह आप खड़ो है आप कर आपी ने अपार गुरमुख सेवा थाए पवे उन मन तत् कमाह मसक्कत लहो मजूरिया मंग मंग खसम दराह नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाही को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहणे रतना नाल जुड़न

हर सच्चै आपी एक दूजै भाई खुआयन होमै विच व्यापी इहो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापी जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल।

मैं तन अवगण एतड़े खसम ना फेरे चित महला पहला हौ बलिहारी तिन को सिफत जिना दैवात सब राती सुहागणी एक मैं दुहागण रात पौड़ी धर्मंगत जाचै दान हर दीजै कृपा कर गुरमुख लेहो मलाए जन पावै नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत धर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग मैं वरतै आप हर सेती।

मत दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए रहाव। काकै करवै रह ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा। काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया रहाव। करो अरदास गाम किश बाकी, लियो नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी। एक ना थाक समाया।

करे वह जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी हर के चरण निवासा जिस कौ शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कौ तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह ताल जो जान पासा सूही ललत कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला हर के लोगा मोको नीत दसै पटवारी ऊपर पुजा कर मैं गुर पह पुकारिया इन्हो लिया उभारी रहाओ नौ ढांडी दस मुनसफ धाव है रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापह नाही बहु बिस्टाला लेही बहत्तर घर एक पुरख समाया उन दिया नाम लखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम ना काई संता कहो मत कोई निंदो

सह की सार सुहागण जान, ताज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुने अपाख, सो कत जान पीर पराई, जा कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पख हीनी, जिन नाहा निरंतर भगत ना कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रवदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब घट भीतर हाट चलावे।

की ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाऊ, जो किछ होआ सब किछ तुझते। तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतुराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना।

तन ताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर घट ही तीरथ नावा एक शब्द मेरा प्राण बस्त है बहुहर जन्म ना आवा।

रहाऊ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

अलख अपेव रहाव, माया मोहतर कटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एक एक को नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज त्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बोरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै, खिन सत गुर बूझ बुझाई रहाव, मेरा प्रभ बिसरे हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेक चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़ै खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सिंह, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म गवाया, दूजा भाऊ ना देई लिव लागण, जिन हर के चरण वसारी।

जंत विचारी मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है मन मुख बंद विचारी सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाली तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाणी से मन मुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तुल।

गुर प्रसाद वस्सै मन आय, ताको जाने दुबदा जाय रहाउ। आप सराप कसवट्टी लाय, आपे परखे आप चलाय, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने एको सोए। माया का रूप सब तिसते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिसे आए, सब सच दिखाले ता सच समाए। आपे लिव धात है आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है। सब मह एक समाना, सतगुर परचै हर नाम समाना, जिस कर्म होवै सो सतगुर पाए, अन दिन लागै सहज ध्याना रहाउ। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभमाना, जब अपनी जोत खिंच है तू स्वामी, तब कोई करो दिखा विखियाना। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी नदाना, ज्यो आप चलाए तिवें कोई चाले, ज्यो हर भावै भगवाना।

निदाना जात संयम तीर्थ ऊना जुगा का धर्म है। कल मह कीरत हर नामा जुग जुग आपो अपना धर्म है। सोध देखो वेद पुराना गुरमुख जिनी त्याया हर हर जग ते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूकै मन अभमाना। कहत सुनत सबे सुख पाव है मानत पाहे निदाना। बलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गावह आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हौं तिन बलिहारै जिन हर मन बसाए। हर जन को मिलिया सुख पाइयै हर गुण गावै सहज सुपाई रहाउ। सदा रंग राते तेरे क्याए हर जीव आप वसै मन आए। आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेलै मेल मलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए निज कर वासा हर गुण गाए। रंग चलूलै हर रस पाए एहो रंग कदे न उतरै साच समाए। अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा। मिलावन महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई। हो मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुर ते सोभा पाई। जगदीश सेवो मैं अवर न काजा अन दिन आनंद हुए मन मेरा। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ। मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई। जीवन मरन को समसर वेखै बहुड़ ना मरे ना जम पेखै। घर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान। सद ही लागा सहज ध्यान अन दिन गावे एको नाम। इस जुग मह बड़े आई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई। जह देखा तह रहया समाई।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरिय बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन चलारे माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हमे पचे दीपक देख पतंगा। सगले सिंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पर्दा देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साद, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाए, दुर्त गया हर नाम त्याए। रहाउ सबनी थाई रव आप, आद जगाद जाका वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जित किते दिसह नाली। नानक दास खसम प्रतपाली, बिलावल महला पंजवा। सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण।

दुख हर सिमरत नसी जां कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार विसरत नाम होत तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर विसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन।

पूरा कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड भागी से कांडिय है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधी है निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटी है प्यारी चूके जम की काणी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनस है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। बलावल महला पंजवा बिखे बन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकती ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगन अत रूप रस माते इन संग सूख ना पाया। धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड भागनी सखिए संतां संग समाइए। तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइए। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइए। प्रेम बिछोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक त्याईए। दृष्ट धार मन बेदिया प्यारी रतड़े सहज सुपाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छ पजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार विजने बताया, ऐसा गुरु वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़।

बहु तपत व्यापिया शीतल पये हर हर जस जापिया कोट जतन संतोख ना पाया मन त्रिपताना।

मिलै निस्तरीय बिलावल महला पंजवां गुर का शब्द हृदय महचीना सगल मनोरथ पूर्ण आसीना संत जना का मुख उज्जल कीना कर कृपा अपना।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारै मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव, सगल सरंजाम करे प्रभ आपी। भय मनोरथ सो प्रभ जापी, अर्थ धर्म काम मोख का दाता। पूरी भई सिमर सिमर बेधाता, साध संग नानक रंग माणिया। कर आया पूरे गुर आणिया, बिलावल महला पंजवां। सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव, हर हर नाम जपत नर जीवे। मर खवार साख नर थीवे, राम नाम होआ रखवारा। चख मारो साकत बेचारा, निंदा कर कर पचह कनेरे। मृतक फास गले सिर पैरी, कहो नानक जप है जन नाम। ताके निकट न आवे जाम, राग बुलावल महला पंजवां। कर चौथा दुपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो, कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हिरदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव, अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी। कहो नानक जप जीवे ज्ञानी, बिलावल महला पंजवां। शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सुवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाथा जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु सांगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवां, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद समारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आरजा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तिण त्रिभवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवां, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटै सो काल रहाव, साध संग भजियै गोपाल। गुण गावत टूटै जम जाल, आपे सतगुर आपे प्रतपाल।
नानक जाचे साधरवाल बलावल महला पंजवा मन मैं सिंच हो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बलावल महला पंजवा रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाऊ राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम हृद माही त्याई नानक गुरपुरे सरनाई जिन्हें अपने नाम की पैज रखाई बलावल महला पंजवा सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाउ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिसे आगे ही मारे करतार नानक दास तां की सरनाई जा को शब्द अखंड अपार बलावल महला पंजवा ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाउ सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन अरोग गुण गावु नित राम के एह अवखद जोग आए बसो घर देश मह एह भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे लह गए बियोग बलावल महला पंजवा काहू संग ना चाल ही माया जंजाल ऊट सधारे शतरपत संतन कै ख्याल रहाउ हम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल सत बचन साधु कह नित जपह गोपाल सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल बलावल महला पंजवा सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाउ जय जय कार जगतर मह लोचह सब जिया सो प्रसन्न पए सत गुर प्रभु कछ बिघन ना थिया जा का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास सदा सदा वडियाईया नानक गुरपास राग बलावल महला पंजवा घर पंजवा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू घर बार बिन सतबार ना लाग गई ज्यो कागद बूंदार सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख बीचार सिद्ध साधक गिरही जोगी ताज गए घर बार रहाउ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लग है गावार कहां सो भाई मीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मरार बलावल महला पंजवा लोकन किया वड़ियाईया वैसंतर पागो ज्यो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल हुए तो भगती लागो लपट रहे मन बासना गुर मिल एह त्यागो रहाओ करो बेनती अत घनी एहो जियो हमागो अर्थ आन सब वारिया त्रिय निमक सुहागो पंच संग गुरते छुटे दुख अर रागो हृदय परगास प्रगट भया निसबासुर जागो सरल सुहागन आया जिस मस्तक भागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो बलावल महला पंजवा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड भागा मैला कदे न होवई नह लागे दागा प्रभ पाया सुख दाईया मिलिया सुख पाए
सहज समाना पीत।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारी, मान करो तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करह असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारी। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत किनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याई। जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइय। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राखो हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा नी धरिया धर तेरिया एक नाम अधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बुझे। बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर से वो अपना काहे फिर हो अपागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कहताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी। अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। मेहमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे चीता। रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

तुम मिलहु दयाल, निस्बासर मन आनंद होत, चितवत कृपाल रहाव। जगत उदाहरण साध प्रभ, इन लागो पाल, मोको दीजै दान प्रभु, संतन पागराल। उकत सियानप कछ नहीं, नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते, काट हो जम जाल। बिनो करो करना पते, पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग, नानक सुख साल। बलावल महला पंजवा, कीता लोड़ है सो कर है, तुझ बिन कछ नाही, प्रताप तुम्हारा देख कै, जमदूत छड़ जाहि। तुमरी कृपा ते शूती है, बिन सै अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ, पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजया नामै बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लाव हो तित तित लग है, सियानप सब जाली, जात कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किश तुम ते मांगना वडभागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवां गुण गाए। बलावल महला पंजवा, साध संगत कै बास बै, कल मन सब नसना, प्रभ सेती रंग रातिया, तांते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोबिंद का, सूची पई रसना, मन तन निर्मल हुई है, गुर का जप जपना रहाव। हर रस चाखत त्रापिया, मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई, उल्ट कमल बिगसना। शीतल शांत संतोख होए, सब बूझी तृष्णा, दह दिस धावत मिट गए, निर्मल थान बसना। राखन हारै राखिया, पए भ्रम पसना, नाम निधान नानक सुखी, एक साध दर्शना। बलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै, तब होहे निहाल, राज मिलक सिकदारियां, अग्नि मह जाल। संत जना का शोहरा, इस चरणी लाग, माया तारी शत्रपत, तिन छोड़ो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा, सो सर्ब निदान, ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार, ते बिखु समान। भगत जना का लूघरा, ओड नग्न ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी, पहरत पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे है, अद विचों टूटे, हर जन की सेवा जो करे, इत उतह छूटे। सब किश तुम ही ते होवा, आप बनत बनाई, दर्शन भेटत साधका, नानक गुण गाई। बलावल महला पंजवा, सर्वनी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो, संत चरण कर सीस तर, हर नाम त्यावो। कर कृपा दयाल प्रभ, एह निध सिद्ध पावो, संत जना की रेणुका, लै माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए कर, बिनो बलावो, पाम मनोवा आप त्याग, संत संग समाव। सास सास नह विसरे, अनकत है ना तामो, सफल दर्शन गुर पेटी है, मान मोह मटावो। सत संतोख दया धर्म, सिंगार बनावो, सफल सुहागन नानका, अपने प्रभ पावो। बलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना, सब मह प्रगटाया, जिस जन होवा साध संग, तिस भेटै हर राया। एह प्रतीत गोविंद की, जप हर सुख पाया, अनक बातां सब कर रहे, गुर घर लै आया रहाउ। सरन परे की राखता, नाही सहसाया, कर्म कूम हर नाम बोए, अवसर दुलभाया। अंतर जामी आप प्रभ, सब करे कराया, पतत पनीत कणे करे, ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मनुख जन, माया परमाया, नानक तिस पत राख सी, जो प्रभ पहराया।
ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਟੀ ਤੇ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਅਨਕ ਸਿਧਰ ਮਨ ਮੈਂ ਢਕੇ ਨਿਰਮਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਏ, ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਰਚੇ ਜੇ ਆਨ ਸਿਉ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇ ਰਹਾਉ। ਸਿਮਰਹੋ ਸਿਮਰਹੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਤ ਬਿਲਮ ਕਰੇ, ਛੋੜ ਪਰਪੰਚ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਚੋ ਤਜ ਕੂੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਅਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀਏ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲੇ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਸੰਗ ਬਰਨੇ, ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਲੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਅਨਿਆਸ, ਸਭ ਉਪਰ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਨ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਪਾਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਆਸਰਾ ਸੰਤਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਰੱਖੈ ਆਪ ਦੇਵ ਸੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੁਮਾਰੈ, ਕਰਨਹਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਅਪਦੇਸਿਆ ਸੁਖ ਖਸਮ ਰਜਾਈ। ਚਿੰਤ ਅੰਦੇਸਾ ਗਣਤ ਤਜ ਜਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਨਹਿ ਬਿਨਸੈ ਨਹਿ ਛੋੜ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਹਾ ਤਪਤ ਤੇ ਭਈ ਸ਼ਾਂਤ, ਪਰਸਤ ਪਾਪ ਨਾਠੀ, ਅੰਡ ਕੂਪ ਮੈਂ ਗਲਤ ਥੇ ਕਾਢੇ ਦੇ ਹਾਥੇ, ਓਏ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜਨਾ ਹਮ ਉਨਕੀ ਰੇਨ, ਜਿਨ ਭੇਟਤ ਹੋਵਤ ਸੁਖੀ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਰਹਾਉ। ਪਰਾ ਪੂਰਬ ਲਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਅਭਿਆਈ, ਬਸਤ ਸੰਗ ਹਰ ਸਾਧਕੈ

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझे आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चेते आई संतन कै आनंद एहो नेत हर गुण गाए।

नानक तरिया साध संग हर हर गुण गाओ। बलावल महला पंजवा। कमन कमन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुटै जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत तिस स्यों तेरा भेद, बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत घना।

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओहो स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखू

पार, धर्म अर्थ अर काम मूख, देते नहीं बार, भगत अराध है एक रंग, गोविंद गोपाल। राम नाम धन संचया, जा का नहीं सुमार, शरण परे प्रभ तेरिया, प्रभ की वड्याई, नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई। बलावल महला पंजवा, सिमर सिमर पूरन प्रभु,

राए भगतन की रास तोट ना आवै कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमावत सब सुखी किसी ऊन ना दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करह सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बलावल महला पंजवां हर हर हर आराधिय होइय आरोग राम चंद की लष्टका

संयोग जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग राग बलावल महला पंजवा दुपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

प्रभ राखता भगतन की यान। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारविंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ता की निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन कन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कह जो कह सो करना। पये प्रसन्न गोपाल राय पहु किश नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे। जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ। करन कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ। विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहुड़ ना ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे बाँचत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती हृदय कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनाव है। साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन। जी सगल दयाल भये हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहे उ सर्बतर मैं प्रभ गुणी गहीर। नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की धीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास। पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव। जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जात कत मेरे साथ।
ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ, ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾਂ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ। ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ, ਭਉ ਨਾਠਾ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ, ਫਿਰਤੇ ਪਹਿ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ, ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ, ਹਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਨਾ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਿਮਰਤ ਗੁਣਤਾਸ। ਰਹਾਉ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ,

पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पही प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखियन पार

ताप रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शेवां

दाती मिल संगत हर गुण गाए रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाए सबहू तले तले सब ऊपर ए

नमस्कार दंडौत वंदना अनकबार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरत।

सोई पल हमरै पेख नानक सुख चरनारै बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तौ सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मनह बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बदारन इनते काढ़ लेहो मेरे स्वामी।

पूर रही दिनस अर रात रहाओ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाव गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाती,

पर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर काम न आवत हे, जां स्यो राच माच तुम लागे, ओहो मोहनी महावत हे रहाओ, कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ खिनह मैं जावत हे, उर्ज रहियो इंद्री रस प्रेरियो, बिखै ठगौरी खावत हे, त्रिण को मंदर साज सुवारियो, पावक तलै जरावत हे, ऐसे गढ़ मह ऐठ ठीलो, फूल फूल क्या पावत हे, पंच दूत मूंड पर ठाटे, केस गहे फेरावत हे, दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी, सोए रहियो मद मावत हे, जाल पसार चोग बिसथारी, पंखी ज्यों फहावत हे, कहो नानक बंधन काटन को, मैं सतगुर पुरख त्यावत हे। बिलावल महला पंजवा, हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारू मन है अधारू, चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाओ, सहज समायो गुरह बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, प्रिय मुख लागो जौ वड भागो, सुहाग हमारू कतो ना डोली, रूप ना धूप ना गंध ना दीपा, ओत पोत अंग अंग संग मौली, कहो नानक प्रिय रवि सुहागन, अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा, गोविंद गोविंद गोविंद मई, जब ते भेटे साध दयारा, तब ते दुर्मत दूर पई रहाओ, पूर्ण पूर रहो संपूरन, शीतल शांत दयाल दई, काम क्रोध तृष्णा अहंकारा, तन ते होए सगल खई, सत संतोख दया धर्म सोच, संतन ते एहो मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा, क्या हम जी जंत बेचारी, वर्ण ना साकह एक रुमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंदरा, बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई, क्या कथिया किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रह समाई रहाओ, जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई, शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक कौ बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेटले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ, जो मानुख मानुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारू, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सूख सहज अर कनो अनंदा, गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको, गुर पूरै मेरी उल्ट तरी, देखियो मोहन सब कै संगे, ऊन ना काहू सगल परी, पूर्ण पूर रहियो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता, हौं क्या कहता, जान पर भीन ठाकुर प्रभ मेरे।

जो जीयन मह होता रे मन काए कहां लोडह कहें। जो पेखत ही संग सुनता ऐसो जान भय मन आनंद आनना बियो करता। कहो नानक गुर भय दयारा हर रंग ना कबहू लहता। बलावल महला पंजवां निंदक ऐसे ही झर परी है एह निशानी सुनो तुम भाई। जो कालर भीत गिरी है रहाओ जो देखै शिदर तो निंदक अमा है। भलो देख दुख भरी है आठ पहर चितवै नहीं पहुंचै। बुरा चितवत चितवत मरी है निंदक प्रभु पलाया काल नेरह आया। हर जन स्यों बाद उठरी है नानक का राखा।

करह करावह मुँह कर पावह पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ काच बेहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे।

परम गबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभु होत दयारा, गुर भेटै काढै बाहां परे। बिलावल महला पंजवां, मन तन रसना हर कीना, भय आनंदा मिटे अंदेसे, सर्ब सुख मोको गुर दीना रहाउ, ज्ञानपते सब भई सिया।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहूं ना मान्यो मन शीना बलावल महला पंजवां गुरपुरै मेरी राख लई अमर

का जपया जाप। कहा करे कोई बेचारा प्रभु मेरे का बड परताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही। ताकि शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही। बिलावल महला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभु नाम। जरा मरा कछ दुख न व्यापै आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परिये नित सरनी गुर ते पाइए एहो निदान। जन्म मरण की कटिए फांसी साची दरगाह का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो मन ते छूटे सगल गुमान। कहो नानक ताकी शरण आई जहां का किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा मन तन अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत परपकार नेतर तिस रसना का मूल किछ नाही रहाउ। कुल समूह उदरे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही। संत सेवक भगत हर ताके नानक मन लागा है ताही।

काटिया हिन मह हुए गया है खाक। मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक। पुत्र मीत धन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब भाई साक। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बलावल महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेव। आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव। रहाउ आद मद

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंद प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगुण सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिनस गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराध नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुए थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार जो हुए सग

जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहिया पर पूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझे।

अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर तिसमह प्राणी गलत पया सरन परे न

कीत। दुश्मन दुष्ट रहे झख मारत, कुशल भया मेरे भाई मीत रहाउ। गई ब्याद अपाद सब नासी, अंगीकार कियो करतार। शांत सुख अर आनंद कनेरे, प्रीतम नाम हृदय उरहार। जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी, तू समरथ स्वामी मेरा। दास अपने को राखन हारा, नानक दास सदा है चेरा। बिलावल महला पंजवा, गोविंद सिमर हुआ कल्याण। मिटी अपाद भया सुख साचा, अंतर

ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माही बस्त है तू कर कृपा प्रभे अपनी बल बल जाऊं श्याम सुंदर को कथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोहे करहो कृपा ठाकुरे अपनी बलावन महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हृदय धर मन ध्यान रहाउ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जाका किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग परापत जाको तिन्ही पाया एहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान बलावन महला पंजवां राख लिए सतगुर की शरण जय जयकार हुआ जागे अंतर पार ब्रह्म मेरु तारन तरन रहाउ विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन राग बलावल महला पंजवा दुपदे घर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा ईक है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर खुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ दराऊ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर पेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवा तुम समरथा कारण करन ताकन तात गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो ठौर नाही कछ ढीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं कृपाल कृपा नित जीवन पद नानक हर दर्शन बलावल महला पंजवा ऐसी कृपा मोहे करो संतह चरण हमारो माथा नैन दर्स तन तूर पर हो रहाओ गुर को शब्द मिरहि अरै बासै हर नामा मन संग धरो तस्कर पंच नवारो ठाकुर सगलो भरमा होम जरो जो तुम करहो सोई भल मानै पावन दुबदा दूर टरहो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरो बलावल महला पंजवा ऐसी दीखिया जन स्यों मंगा तुमरो

पावन प्रभ बिरद तुम्हारू हमरे दुख हृदय मत तारू जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही हम मैं पटल कृपा कर जारू जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारू जन नानक प्यास चरण कमलन की पेक दर्श स्वामी सुख सारू बिलावल महला पंजवा आग है पाछ कुशल भया गुरपुर पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाउ मन तन रव रहे हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचारियो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अबनासी नानक उचरे हर की जया बलावल महला पंजवा बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवा।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाऊ। ताजे अभिमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा भेट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवां जीवों नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुरपूरे तब मेरी आस पुनी। रहाओ पीर गई बांदी मन तीरा, मोहयो आनंद तुनी उपजयो चाओ मिलन प्रभ प्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारी,

अभाव है, हार कजर बस्तर आभरण कीने, उडीनी उडीनी उडीनी कब कारिया वैरी रहाव, सरन सुहागन चरण शीस धर लाल।

सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो अलम करंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अनते टूटी है रिखते छूटी है मन हर रस घूटी है।

नौवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गनका जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, नह मनुआ बस जाको,

तै देखै सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई बिन भै पै भगत ना हुई शब्द रते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाउ ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई कथ कथ बाद करे दुख होई कथ कहने ते रहे ना कोई बिन रस राते मुक्त ना होई ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत ना होई नाम भूले थाओ ना कोई मन माया बंदियो सर जाल घट घट व्याप रहो बिख नाल जो आंजै सो दिसै काल कारज सीधो हृदय संभाल सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई मनमुख हो मैं पत गवाई आपे करतै भगत कराई।

वेद पकार भगत सरोत सुन सुन मन वेख जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामंग गुरमुख शांत उत्तम करामंग मनमुख जोनी दुख सहामंग।

को दूजा देख कहों पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते तृप्त ना आवे तृप्त मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेविया अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, किस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई, औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई, सतगुर मिले वड्डी वड्याई।

जलत खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया एह मन नाचै सत गुर आगै अनाद शब्द धुन तूर बजैया हर हर उस्तत करै दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर तार चोऐ अत निर्मल जिन पिया तिन्ही सुख लहिया मन हट कर्म करै अभमानी ज्यों बालक बालू कर उसरैया आवै लहर समुंद सागर की खिन मह भिन्न भिन्न टह पैया हर सर सागर हर है आपे एहो जग है सब खेल खलैया ज्यों जल तरंग जल जलह समाव है नानक आपे आप रमैया बलावल महला चौथा सतगुर परचै मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन भस्म दरड़ैया अमर पिंड भये साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रहीया कृपा करहु मधुसूदन माधव मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाउ तजै गिरहस्त भया बनवासी एक खिन मनुआ टिकै ना टकैया धावत ताए तदे घर आवे हर हर साधु सरन पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करै नहीं बूझै गुर कै शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर होवा मन दह दिस चल चल गमन करैया पर पवन करै बूझै नहीं कृष्णा मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिख है बहुतेरे मन मांग है रिद सिद्ध चेटक चिटकैया तृप्त संतोख मन शांत ना आवे मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंत उपैया साधु सरन परै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमयार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन धना जत सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई भगत वचल अंगीकार करैया नानक सरल परे जग जीवन हर हर कृपा तार रखैया बलावर महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा।

नानक हर गुर सरण समैया बलावन महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया गुर देखे शरदा मन पूरी ज्यो चात्रक प्रयो प्रयो गूंद मुख पैया मिल मिन सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख पुलानी मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यों बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर ना पावे बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे हौ तिस विटहो बल बल घुम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सत गुर सरन पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल ना पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत सरन जे आवे प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया कर कर किरिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसवा कह कर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पसाई आपे कोल कोल अंग लैया।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो बात पूतहि हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हितन संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिख

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणी, जम दरबांदे आवन जाने, क्या लै आवहै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ किसे आखा दूर। चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा।

जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन अवतूता, ऐन सजागै कबह ना सूता, जागत जागै

डर जान तख्त नवास सच मन भाण चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पता।

0: वार वार
1: दिन सनहण तिवै संसार आवागौण किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आदि पुरख आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अभागे सतगुर भेटिए सो जी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै।

कह काय परमे भूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हम मारे ता दर सूझै एक।

आई, थिती वार सब आवह जाहि, गुज शब्द निश्चल सदा सच समाहि, थिती वार ता जां सच राति, बिन नावे सब परमह काची, मन मुख मरह मर बिगति जाहे, एक ना चेतह दूजे लुवाहे, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की तोन गुर विचार, बहुते पेख करह पेख तारी, पाव पाव ब्रह्म है काची सारी, एथ सुख न आगे होए, मन मुख मुए अपना जन्म खोए।

मुग्ध गुवार, नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए, इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला, शंत दखनी

विचार धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर स्यों रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नान

है। मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे, एक भवनी हठ ना जाना नानका सच गह रहे। पिंडरी रहन भली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम। नवहान नव धन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड़ कपत सुभाओ दूजा चाकरी लोकानिया। मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशानिया, कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुद पानिया। जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम, जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानी राम। अकथ कहानी पद निर्वाणी को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गुआए त्रे पवन सोजी सूजे। रह अतीत परंपर राता साच मन गुण सारिया, ओह पूर रहिया सर्ब ठाई नानका उरतारिया। महल बुलाएड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम। मन मार रीजै शब्द सीजै त्रै लोक नाथ पछाणे, मन दीक डोल ना।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइए गोविंद पाइए देहो सखिए मोहे मते दिन रहन ठाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक

मोनी मोनी महा बचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए तीर्थ मीठी मनह लागे नाम लैण ना आवे ग्रह बनह तीरे बरत पूजा बाट घाटे जोहनी नानक पयम पै दया धारहु मैं।

मुखो नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण।

जियो सुख सागर प्रभ भेटिया नानक सुखी होत एहो जियो संत सुख सागर प्रभ पाई जब होवे भागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पवो सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ तज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरह बल गईये दोहचार नरसना राम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हौ मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिया हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास तिन्हड़े अपने।

कथा हरि उत्तम हर प्रभु गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरे हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणी जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाइय मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मन मुख थाए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है बिचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाए महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाए जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाए सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद घर हर भगता का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुझे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवे झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंद है ते ब्राह्मणा जे चल सत गुर पाई जिन कै हृदय हर वसै हम मैं रूप गुआई गुण रव है गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाई इस जुग में है विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चेत लाई नानक जिनको नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाई महला तीजा सतगुर की सेव ना कीतिया शब्द न लगो पाऊ हम मैं रोग कमावना हत दीर्घ बहु सुआऊ मन हट कर्म कमावनी फिर जोनी पाई गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लए मलाई नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाई पौड़ी सब वडियाईयां हर नाम विच हर गुरमुख त्याई जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई है गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्ब सुख पाई है गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाई है जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाई है सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मलाई सतगुर का दर्शन सफल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाई गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाई हर रस पी संतोख हुआ सच वस्या मन आई सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दह दिस पसरिया गुर कै सहज सुभाए नानक जिने अंदर सच है से जन शपहना किसे देश पाए महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जां कहो नजर करे मानस ते देवते भए सच्ची भगत जिस दे हौं मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावै की वड्डी वडियाई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उन्ना अंदर हिरदै पाई निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन उन्ना पराया भला ना सुखाई क्या होवै किस ही की झख मारी जां सच्चे स्यों बन आई जे गल करते पावै सा नित नित चढ़ै सवाई सब झख झख

चित लाई, हर सुख पल्लर त्यागिया, नाम विसार दुख पाई, मनमुख ज्ञानी अंधले, जन्म मरह फिर आवे जाई, कार्य सिद्ध न होनी, अंत गया पछताई, जिस कर्म हो तिस सतगुर मिले, सो हर हर नाम

निदान सुखदाता तेरे मन वसै होमै जाए अभमान नानक नदरी पाईए अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किछ हर करावे सो ओहि करहे सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर के वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले का।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै। करमी सतगुर भेटी है ता सच नाम लिव लागै। नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन पाया। गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया। नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार। भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार। दूजा

हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुवार पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहू तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहू भगत जना को सनमुख होवै सो हर रास लय वे मुख भस पाहू हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जगाती तिन्ना नेड़ ना जाहु जन नानक हर नाम धन लद्या सदा वे परवाह श्लोक महला तीजा इस जुग मैं भगती हर धन खटिया होर सब जगत परम भलाया।

आप तरिया कुल उदरे धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा भ्रम भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

सबना का अभिमान जिथे को वेख तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे वेमुख होवे सो फिरे प्रिष्ट थान जन नानक कै बल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पै।

आनंद वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुर बख्श लए।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नाख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो।

भेख तारी, आसन पवन दूर कर बबरे, छोड़ कपट नित हर भज बबरे रहाओ। जेहे तू जाच है सोते पवन भोगी,

वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानी है जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

की कार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाउ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

ऐसी मेरै सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेविया नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर निफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा। मेरे मन हरि ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा। जो संसार के कटम मित्र भाई दिसह मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मलासा। जित दिन उनका सुहाओ होई ना आवै, तित दिन नेड़ को ना टुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा। इसका प्रवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल माने अपना। जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मह सब निदान। सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना। शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड बडना। किस जन की वड्याई हर आप वधाई, ओहो कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक कहो हर दान एक दीजे, नित बसह हृदय हरि मोहे चरना। गोंड महला चौथा। जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान गोंड महला चौथा हर अंतर जामी सब तह वरत जिहा हर कराए तिहा को करइए सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सब दू रख लइए मेरे मन हर जप हर नित पड़इए हर बिन को मार जवाल ना साकै ता मेरे मन कायत कड़इए रहाउ हर परपंच किया सब करतै विच आपे अपनी जोत तरइए हर एक को बोले हर एक बुलावे गुर पूरे हर एक दिखइए हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासो मन क्या चोरइए निह कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्ब सुख पइए जिस दे वस सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा धिआइए जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा ध्याए तू तुद ले छड़इए गोंड महला चौथा।

मेरा वीर मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर जन नानक की हर आस पुजाव हो हर दर्शन शांत शरीर शका एक राग गोंड महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाऊ सुनतो करता पेखत करता अदृष्टो करता दृष्टो करता ओपत करता परलो करता व्यापत करता लिपतो करता भक्तो करता बूजत करता आवत करता जात पी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुर प्रसाद नानक समदृष्टा गोंड महला पंजवा फाक्यो मीन कपक की न्याई तू उर्ज रहे संभाए ले पग धार है सास लेख लै तो उदर है हर गुण गाए ले मन समझ छोड़ आवाए ले अपने रहन को

ज्यो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरै, थिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिनसेउ, ओहो मूठो मूड लभाए ले। तू हुआ पंच वास वैरी कै, छूट है पर सरनाए ले। ओहो कृपाल दीन दुख भंजन।

राग गोंड महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी मह जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कह परे पंडार सगल कटां देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमख जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा नाम संग कीनो व्यवहार नामो ही इस मन का आधार नामो ही चित कीनी ओट नाम जपत मिटह पाप।

तिहाई, काटे अवकट जात कतह सहाय रहाऊ। रंक राहो जाके एक समान, कीत हस्त सगल पुराण। बियो पूछना मसलत तरे, जो किछ करे सो आपे करे। जा कायंत न जानस कोए, आपे आप निरंजन सोई। आप अकार आप निरंकार, काट काट काट सब काट आधार। नाम रंग भगत भय लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अगाए, नानक तिन जन लागे पाए। गोंड महला पंजवा, जा कै संग इहो मन निर्मल। जा कै संग हर हर सिमरन, जा कै संग किल बिख होहे नास। जा कै संग हृदय परगास, से संतन हर के मेरे मीत। केवल नाम गाइए जा कै नीत रहाउ। जा कै मंत्र हर हर मन वसै, जा कै उपदेश परम पौ नसै। जा कै कीर्त निर्मल सार, जा की रेन बांछै संसार। कोट पतत जा कै संग उधार, एक निरंकार जा कै नाम आधार। सर्ब जिया का जानै पेओ, कृपा निदान निरंजन देव। पार ब्रह्म जब पए कृपाल, तब पेटे गुर साध दयाल। दिन रैन नानक नाम ते आए, सुख सहज आनंद हर नाय। गोंड महला पंजवा, गुर की मूरत मन मह ध्यान।

के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर रहया समाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्व पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ, गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी,

कृपा धार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अनद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी सरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए करन कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिये संसार वडभागी पाइये पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सकै जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटहै उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

गोंड महला पंजवा संत का लिया तरत बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसे दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदा किसका पतन होए जिस को राखे सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया विश्वास जियो पिंड सब तिस की रास नानक को उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गोंड महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण

नारायण साधु संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जाको राखे रखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ में अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जप

पाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवा।

वाला, ना इस दुख नहीं जम जाला, ना इहो बिनसै ना इहो जाए, आद जगादी रहया समाए, ना इस उसन नहीं इस सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरक नहीं इस सोग, सब किस इसका इह करने जोग, ना इस बाप नहीं इस माया, इहो अपरंपर होता आया, पाप पुन का इस लेप न लागे, घट घट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकत उपाया, महामाया ताकी है छाया, अछल अछेद अभेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकी गत मित कछु ना पाए, नानक ताकै बल बल जाए, गोंड महला पंजवा, संतन कै बलिहार जाऊं, संतन कै संग राम गुण गाऊं, संत प्रसाद किलविख सब गए, संत सरन वड भागी पए, राम जपत कछ बिघन ना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै, रहाउ पार ब्रह्म जब हुए दयाल, साधु जन की करै रवाल, काम क्रोध इस

गए। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां महा।

मराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाही, सगल पै मिटे जाकी सरन, निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरिया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा कहो कबीर शूशा घट बोले। भरिया हुए सो कबहू ना डोले गोंड। नरु मरे नर काम न आवे पशु मरे दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हों बलिहारे आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट किसै तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरे तरै ध्यान वाके हृदय बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद। गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे ओ। ना एहु जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदर मह कौन बसाई ता का अंत ना को उपाई रहाओ। ना एहु गिरही ना ओदासी ना एहु राज ना भीख मगासी। ना इस पिंड ना रख तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती। ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर एहु राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस। गोंड टूटे तागे न खुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान। कूच बिचारे पुए फाल
ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਰ ਚੜਬੋ ਕਾਲ ਇਹੋ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੋ ਦਰਬ ਖੋਈ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕ ਸਰ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਤੁਰੀ ਨਾਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਬਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਕਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਲੜਕੀ ਲੜਕਨ ਖੈਬੋ ਨਾਹੀ ਮੁੰਡਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਧਾਪੇ ਜਾਹੀ ਇਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇਕ ਦੋਏ ਬਾਟ ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨਕੋ ਖਾਟ ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਬੱਧ ਪੋਥੀ ਹਮਕੋ ਚਾਬਨ ਉਨਕੋ ਰੋਟੀ।

इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारी का हुए बनास आगे नरक इहा भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसे संसार कर शिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बेचारी संत भाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारू डरे साकत की ओह पिंड परायण हमको दृष्ट परे त्रिख डायण हम तिस काबो जानिया पेव जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही आवत पहिया खुदे जाए वाके अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताजे जगत स्यों सूती साधु कै ठाडी दरबार सरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पगने वर सनक सुनहरी जौ लग प्राण तऊ लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे सुहागन भवन त्रै लिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टीकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रह मह खेते रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए सूत बिना कैसे मणि परोइए कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाइए साधु बिन तैसे अवगत जाइए जैसे मात पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपरे धोई कोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन तज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिए परचे साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजारह सोदे पांच पलीतह कौ पर बोधे नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात न करे इंद्री कै जतन नाम उच्चरे कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप विचखन गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टहकेव धन ओए संत जिन ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन के साद रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे के संग निकावन अन्न बाहर जो नर हुए हैं तीन भवन में अपनी खोए हैं छोड़ है अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में भक्ते दूधा तारी गुप्ती खाव है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजय अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया
तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुजह हर कीर्त नामा अपने राम है भजरे मन आलसिया रहाउ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस पाव सिंदं गोंड नाद भ्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत ना फेरो रहाउ ज्यो मीना हिरै पशुआरा सोना गढ़ते हिरै सुनारा ज्यो बिखी हिरै परनारी कौडा डारते हिरै जुआरी।

पीतल देखिया मूर्ख को समझाऊं दे रहाओ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देखिया था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था रावण सेती सरबर होई घर की जोए गवाई थी।

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ, हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिन ओले लाख छपाया, मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई, दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाए, राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाउ, जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेट हाय, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाय, हर के लोग राम जन नीके, पाग हीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राख हो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए, राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिने ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे, राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जाने उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे, सेवक जन सेव है से वड भागी, हृदय मन

जीवन दाती, हर संत पगी ले पावे, हौ काटो काट बाद सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे, राम कली महला चौथा, जे वड पाग होवे वड मेरे, जन मिलदिया ढिल ना लाइए, हर जन अमृत कुंट सरनी के, वड भागी तित नवाइए, राम मोको हर जन कार लाइए, हौ पानी पखा पीसो संत आगे, पग मल मल तूर मुख लाइए रहाओ, हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे, जो सतगुर मेल

सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोल हो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आशा पूरी।

गहीरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया नानक कहन ना जाए।

तुने अगाजा निर्त करे कर मनुआ नाचे आनी घुंगर साजा राम को नृत्यकारी पेखै पेखनहार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातों पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सब हो नरारी पाखे कर कर नृत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कोई बाछ पिसत कोई सुरगिंदू। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा पवन मह पवन समाया ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदहाई परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध एहो तौ रचन रचिया कर।

जानन हारे कहो बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

आवै, नाथ छोड़ जाचे लाज न आवे। चल चित जोगी आसन तेरा, सिंही वाजै नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवै जाई, जिसनो हुआ

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हों सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महमा जा की गहर गंभीर।

सर्व प्रतिपाल नानक रातो रंग गोपाल राम कली महला पंजवा मुखते पड़ता टीका सहत हृदय राम नहीं पूर्ण रहत अपदेश करे कर लोक दरडावे अपना कहया आपना कमावे।

अनक पापता के पानी हार, जां को मया पई करतार, जिसे सहाई होए भगवान, अनक जतन वाके सरंजाम रहाओ, करता राख कीता कौन, कीरी जीतो सगला पवन, बेअंत महमा ताकी केतक वर्ण, बल बल जाइए ताके चरण, तिन्ही किया जप तप ध्यान,

जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वास्ते, पौजल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याए मन अटल, ता छूटह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापे हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावे जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान संत

जिस हृदय वसाई नानक ते जन उत्तम पाई राम कली महला पंजवां गौ कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओ चरणी आए पई सुन संतो हो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उदार रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओह सेवक सेवा करे मुख बेरावे अंत ठगावे इकत ठौर ओह कहीं ना समावे उन मोहे बहुते ब्रह्मांड राम जनी कीनी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रहे इस संग राचे सो कछु ना लह इसह त्याग सत संगत करे वड भागी नानक ओह तरे राम कली महला पंजवां आत्म राम सर्ब मह पेख पूर्ण पूर रहया प्रभ।

पूर्ण परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यो प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपट्यो भ्रम गृह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला।

खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाव। गण में देखो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चाल है संग, पवजल तरिय प्रभ के रंग, देही तोये ना उतरे मैल, हम मैं व्यापै दुबदा फैल, हर हरे औखद जो

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सहराचै हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै।

का पोता, हर भगता हवालै होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कछ टोट ना आवे, अंत नहीं हर

करत, तह हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप दिवाया, साध संग तिन हर धन पाया। दयाल पुरख ना

संकरा नहीं जानह पेव, खोज तहारे देव, देवियां नहीं जानह मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोड़ै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

राम कली महला पंजवा राखन हार दयाल कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अराध जंत मिलिय प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाउ ताकी गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद।

मत सार जित हर सुमरीजै कर कृपा जिसे आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपया गुरु।

ज्ञान तां दरगाह पावे मान। गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत्। सतगुर पए दयाल नानक दास निहाल। राम कले महला पंजवा होवे सोई पल मान। अपना तज अभमान दिन रैन सदा गुण गाओ। पूर्ण एही सवाओ आनंद कर संत हर जप। छाड़ सियानप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ। एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर। गुर के चरण नमस्कार पवजले उतर है।

नानक पाया हो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवां दलाब दे सवार जाहि ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लए छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोए सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरै पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनीजै।

तिसका सब कोए, किसह अराध सदा सुख होए, काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे, मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ, जो जो करे सोई मान ले हो, बिन माने रल हो वह छे, किसका पाण

सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, किन मैं थापयो थाप नहारा, किस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जा का प्रताप, राम कली महला पंजवा, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्शडी।

बूटा सूके काष्ट हरे चलूल ऊंचा थल फूले कमल अनूप अग्न नवारी सत गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव किरत घणा का करे उदार प्रभ मेरा है सदा दयार।

रहाओ। जहाँ कह राम बसे मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सुवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसका मस्तक हाथ गुर धरै, सो दास अंधे।

जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचै दरबारे, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरोह पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दह दिस त्यागै, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जीव आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

बिन से अभमान, एक त्याई है साध कै संग, पाप बनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास, काट काट रव

निस्बा सुर मह निमख एक उर तार है जम को त्रास मिटै नानक तेहे अपनो जन्म सवार है राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुध ले छिन छिन औध घटै निस्बासुर बिरथा जात है दे रहाओ तरनापो बिखिन स्यों खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहु नहीं समझै कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन, हुए है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रहै। सा धरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। जीवन तलब निवार, हुए परवाना करै तिंगाना। कल लखन विचार रहाउ, कितै देश न आया सुनिए। तीर्थ पास न बैठा, दाता दान करे तह नाही। महल उसार न बैठा, जे

ज्ञान बेरी काजी कृष्णा हुआ बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बखराण पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाव भया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदै मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावै है।

दुख भागे घर घर मांगत लाज ना लागे रहाउ। गावह गीत ना चीनह आप ज्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए तिख्या सहज विचारी खाए। पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जमदंड। फूटै खापर पीख ना पाई बंधन बांधिया आवै जाए। बिंद ना रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह। निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला।

कैसे उतर सपारी मुंदरा फटक बनाई कान मुक्त नहीं विद्या विज्ञान जेवा इंद्री साध लुभाना पशु पये नहीं मिटे निशाना त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा शब्द विचार चूक ससोगा उजल साच सो शब्द होए जोगी जुगत विचारी सोए तुझ पह नौ नित तू करने जोग थाप उथापे करे सो होग जात सत संयम सच सुचीत नानक जोगी त्रिभवन मीत राम कली महला पहला खट मट देही मन बैरागी सुरत शब्द धुन अंतर जागी वाजै अनहद मेरा मन नीना गुरबचनी सच नाम पतीना प्राणी राम भगत सुख पाईऐ गुरमुख हर हर मीठा लागै हर हर नाम समाईऐ रहाउ माया मोह विवर्ज समाए सतगुर भेटै मेल मलाए नाम रतन निर्मूल कहीरा तितराता मेरा मन पीरा हऊ मैं ममता रोग न लागै राम भगत जम का पौ भागै जम जंदार न लागै मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे शब्द विचार भय निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी अन दिन जाग रहे लिवलाई जीवन मुकत गत अंतर पाई अलिपत गुफा मह रह निरारी तस्कर पंचो शब्द संघारी

परूता जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द बजे दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती। तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्वाणी। सुन समाद सहज मन राता, तज हौ लोबा एको जाता। गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया। राम कली महला पहला, साहा गणह ना करह विचार। साहे ऊपर एकंकार, जिस गुर मिले

जह सैला बिन हर राती मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ वाचे वाद ना बेद विचार आप डुबे क्यों पितरा तार कट कट ब्रह्म चीन जन कोए सतगुर मिले ता सोजी होए गणत गणिय सहसा दुख जिये गुर की सरन पवे सुख थिये कार्य अपराध सरन हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर सरन ना आईय ब्रह्म ना पाईय भरम भलाईय जन्म मर आईय जमदर बहंत हो मरे बेकार ना हृदय नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिस्र कहाव है दुखदा राते महल ना पाव है जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन आपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमुख।

आवे राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

जाय, चार सपवन संघासन पी जाय, न्योली कर्म खट कर्म करी जाय, राम नाम बिन बिरथा सासनी जाय, अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लही जाय, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीर्थ परमीजै, मन नहीं सूचा क्या सोच करी जै, किरत पया दोष का कौ दीजै, अन ना खाहे देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं चीजै, मनमुख जन्म जन्म मरी जै, सतगुर पूछ।

अंदर पास करी जय। तुरकी सेवा राम रवी जय, नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई। जो कही ऐसो प्रभु ते होई, जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई। उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर। जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाऊ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल। जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल। एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान। नाम बिना क्या ज्ञान त्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान। हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे। तीरथ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई। जमपुर बहादुर लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई।

मानता निर्मल अभिमान अभिवा कर्म मिले पावे सच नाम तुम शरण लागत रहो स्वभाव तुम ते उपजो भगति पाओ जप जप गुरमुख हर नाम हऊ मैं गर्भ जाई मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत बीचार राम कली महला पहला ज्यों आया त्यों जावह बौरे ज्यों जन्मे त्यों मरन भया ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यों हेत वधाई की नाम विसार है भरम गया रहाऊ जत सत संयम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संयम साध संगत बिन बात जया लालच लागे नाम बसारे ओ आवत जावत जन्म गया जां जम ताई केस गह मारे सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेश करह नटुआ ज्यो मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हम मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखे साकत मन अभमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवे अंतर सहसा दुख पया अंत काल किस साथ ना चाले जो दिसे सब तिसह मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसे सुनावह पै सागर असरान पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया।

योग जुगत एव पाए, नदरी आवंदा सब किस बिनसै, हर सेती चित लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागै, तां एह सोझी पाए। एहो जोग न होवै जोगी, जे कतंब छोड़ पर भवन करहै, ग्रह शरीर मह हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन भेख करे जोगी, रोग न जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख होवै सोई बूझै, जोग जुगत सो पाए। जोगै का मार्ग बिखम है जोगी, जिसनो नदर करे सो पाए, अंतर बाहर एको वेखै, विचों भरम चुकाए, बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजै नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हों गुर सलाही सदा अपना।

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करहै फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करहै दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औ गावां शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सलाही बिचो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार न पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेव है गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान बिचारी हम मैं तृष्णा मारी।

अहंकारी जिचरयंतर सास तिचर सेवा कीच जाए मिलिय राम रारी आन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

किस करना सो कर रहया अवर ना करना जाय। आपे साजे सिरट अपाए सिर सिर तंदै लाई। तिसह सरेवो ता सुख पावो सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाय लख न लखना जाई। आपे मारज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई। सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई। आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता नगुरी अंध फिरै लोकाई। जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया सतगुर बूझ बुझाई। इकना नाम हो आप पलाई इकना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाह हो संतो तिस दी वड्डी वड्याई। तिस बिन अवरना कोई राजा करत पावस बणत बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा बिरले हुक्म मनाई। तिसनो प्राणी सदा त्याव हो जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई। सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रव्या सर्ब थाई। राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

ठुरा करिया उक्त जोत लै सुरत परीखिया मात गर्भ मह जिन तू राखिया राखन हार समार जना सगले छोड़ बेचार मना रहाउ जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए प्रात पुतहारी जिन दिए तुद बंता अरमीता तिस ठाकुर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना शक्ति अमृत जिन पूजन दिए अंतर थान ठहरावन को दिए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना पेखन को नेतर सुनन को करना हस्त कमावन

लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावे बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मनह सुखाने।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

हर प्रेम भगत बने आई संतो हो, सतगुरु खेप निबाही संतो हो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो हो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कह

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहे आ सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसटारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

संतोह शब्द तरहु प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

पाई हुक्म मन्नी हो गुरु केरा गाव हो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी।

सुर लार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया, भगतां की चाल नराली, चाला नराली भगतां केरी, विखव मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज त्रिष्णा, बहुत नाही बोलना, थन्योह तिखी वालोह निक्की, एक मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वास ना समाणी, कह नानक चाल भगतां, जुग हो जुग नराली।

शब्द सहावा, शब्दो सहावा सदा सुहिला, सतगुरु सुनाया, एहो तिन कै मन वसिया, जिन तुरहो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे कर है गल्ला, गल्ली किन ना पाया, कह नानक शब्द सोहिला, सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना, जिन्नी हर त्याया पवित होए, गुरमुख जिन्नी त्याया, पवित माता पिता कटंब सहत सियो, पवित संगत सबाइया।

जीव मलीन है, कित संयम धोता जाय, मन तो वो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाय, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा इव जाय, जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जू है हारिया,

जन्म जूए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी जन्म रतन।

तेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रह गुर नाले गुर के चरण हिरदय त्याए अंतर आत्मै सुमाले आप छड सदा रह परने गुर बिन अवर न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सत

उदर मह प्रित पाल करी सो क्यों मनो वसारी है, मनो क्यों वसारी है एवड दाता। जे अगन मह आहार पहुंचावी उसनो केहो पोहे ना सकी, जिसनो अपनी लिव लावी अपनी लिव आपे लाई। गुरमुख सदा संभाली है कह नानके वड़दाता, सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया। जां तिस भाणा तां जम्मिया परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। हर आप अमुल कहै मुल ना पाया जाई, मुल ना पाया जाई किसै विटहु रहे लोक बिललाई। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनों सिर सौंपिए विचों आप जाई।

मेरी मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर तेरा स जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया।

प्यास न जाय, प्यास न जाय हूत कित, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर आन रस सब विसरे, जां हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग मह आया, मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, ते कर्मक माया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो विश संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया देव दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो, साचे सुनने नो पठाई, साचे सुनने नो पठाई, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख वडाणी, ता की गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो,

भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावै आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर पाणे अपने बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे। सतगुरु प्रतख हुंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधक पुत भाई

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबाण हर रंग गुर पावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सनमुख होया, रामदास पैरी पाए जियो, सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आन निवाया, हर गुरह भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो, राम कली महला पंजवां शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा, जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोया कट कट सोया, हत अमृत प्रिय गूड़ा, नाल होवंदा लह ना सकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा, माया मद माता होची बाता, मिलन ना जाई परम तड़ा, कहो नानक गुरबिन नाही सूजै, हर साजन सब कै निकट खड़ा, गोविंदा मेरे गोविंदा, प्राण अधारा मेरे गोविंदा, किरपाला मेरे किरपाला, दान दतारा मेरे किरपाला, दान दतारा अपर अपारा, कट कट अंतर सोहनिया, एक दासी तारी सबल पसारी, जी जंत लै मोहनिया, जिसनो राखै सो सच पाखै, गुर का शब्द बीचारा, कहो नानक जो

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगानी सारंग पाने, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन ते आया, सगल तिसे का माणु, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे दी बाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याईए सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणी।

हर त्याए मना खिन ना विसारी है, राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है। उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा। नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा। किल विख हरना नाम पुनः चरना, नाम जम की त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने, देख चलत दयाल सुन भगत बखाने। जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा, सर्व जाचक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा। साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने, बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझे पछाने। मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया, बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया, जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी वछुनिया। आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया। राम कली महला पंजवा, रुण चुनो शब्द अनाहद नेत्र उठ गाइय संतन कै। किल वेख सब दुख बनासन हर नाम जपिय गुरमंतन कै। हर नाम लीजै अमयो पीजै रैन दिनस अराधिय, जोग दान अनेक क्रिया लग चरण कमल है साधी है। पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै। सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम, अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम। सुख निदान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया, हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया। हर एक चितवै प्रभ एक गावै, हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा। पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना, मिल हर कीर्तन सुनिए राम। दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम। दयाल दुख हर सरन दाता सगल दुख निवारनो, मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदारनो। सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा, बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा। राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरह एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे भवजल रहे आवन जाना, सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना। सब इच्छ पुन्नी आस पूरी मिले सतगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा, संत सलोक चरण कमल सरनागति आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधी है विपत निवारन राम, संत प्रभ विपत निवारनो तिस बिन अवरना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरी है जल थल महियल सोए जियो।
जल थल महियल कूर रहया, एक निमख मनहु ना विसरै, गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसरै, कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो, बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच, नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यों रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो, सदा सदा बल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान, नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। संत सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तांकै लाग जियो, भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै, साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै, जन्म मरण बेकार छूते, फिर ना लागै दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। शंत सगल इच्छ मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो, अनंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकी उपमा क्या गणा, बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा, आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी, हर एक त्यावो, सतगुरु तुम सेव सखी, मन चिंदियाड़ा फल पावो। राम कली महला पंजवा, रुति सलोक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म, बांछो साधा धूर, आप निवार हर हर भजो, नानक प्रभ भरपूर। किलविख काटन पै हरन, सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। संत जस गाव हो वडभागी हो, कर कृपा भगवंत जियो। रुति महा मूर्त घड़ी, गुण उचरत शोभावंत जियो। गुण रंग राते तन ते जन, जिन्नी एक मन त्याया, सफल जन्म भया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया। पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्ब पापा हंत जियो। बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। सलोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सा तुध भावसी, नानक नाम आधार। संत सरण साजन परहो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत। शंत रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो। कर नाह निश्चल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमूल्या,
ਵਡਭਾਗ ਪਾਇਆ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ ਭਈ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜੀਓ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਮਿਤੀ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਜੀਓ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭ੍ਰਮ ਮੁਈ ਕਰਤੀ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਹੈ ਲੇਖ ਜੋ ਭਾਣੇ ਸੇ ਮੇਲਿਆ ਵਿਛੋੜੇ ਭੀ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾਂ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੰਤ ਗ੍ਰੀਖ ਮਰੁਤ ਅਤ ਗਾਖੜੀ ਜੇਠ ਅਖਾੜੈ ਕਾਮ ਜੀਓ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸ਼ੋਹ ਦੁਹਾਗਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੀ ਰਾਮ ਜੀਓ ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਵੈ ਮਰਤ ਹਾਵੈ ਮਹਾ ਗਾਰਬ ਮੁਠੀਆ ਜਲ ਬਾਜ ਮੱਛਲੀ ਤੜ ਫੜਾਵੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਰੁਠੀਆ ਕਰ ਪਾਪ ਜੋਨੀ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋਈ ਦੇ ਸਾਸਨ ਜਾਮ ਜੀਓ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਤੇਰੀ ਰਾਖ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਜੀਓ ਸਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਗੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਇਕ ਤਿਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਰ ਗਹਿਲੀਨੀ ਸਾਜਨ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮੀਤ ਚਰਨ ਹਾਂ ਦਾਸੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹਿਤ ਚੀਤ ਸ਼ੰਤ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੁਹੇਲੀਆ ਸਾਵਣ ਭਾਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਧਾਨ ਉਨਮ ਬੁੱਠੇ ਜਲ ਤਲ ਪੂਰਿਆ ਮਕਰੰਦ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਵਨਿਧ ਗ੍ਰਹਿ ਭਰੇ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕੁਲ ਸਮੂਹਾ ਸਭ ਤਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਜਾਗੇ ਨਹਿ ਸ਼ਿਦਰ ਲਾਗੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਜੀਓ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਤ

है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मेलन हार बिन मिल बे शांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साध शरनागति नानक आस पुजाई संत रोत शरद अडम्बरु असू कट के हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत तब मिलिए गुणतास जियो बिन कंत प्यारे नह सूख सारे हार कंगन त्रिक बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना ईत उत दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा।

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रो जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार ढोल श्रृंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बछोह जियो सलोक हर तन पाया सुहागिनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पवन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तारकंत जियो सलोक संत सहाई जी के पवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से वीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिलना मन ते बिसरै तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरै गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आदको आदेश जियो मिनवंत नानक मया तारहो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली।

तपत ओंकार किया जिन चेत ओंकार शैल युग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रि भवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साच संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन धीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सुख

गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपन है घर आवे ऊ नव बरसे नी चर तारा उत्तम शब्द सवार नहारा इस एके का जाने पेव आपे करता आपे देव उगवे सूर असुर संघारे ऊचो देख शब्द विचारे ऊपर आदि अंत त्यो लोई।

मुख सोए, रब जग जीवन अवर ना कोय, नानक नाम रते पत होए, राजन राम रवै हितकारी।

अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रह न कोई किस पह करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरुदेव पतमती लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली सास दीवानी बावरी सिर ते संकट टली प्रेम बलाई रली स्यों मन मह शब्द आनंद लाल रती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लाहा नाम रतन जप सार लभ लोभ बुरा अहंकार

घर हुए आथ देख निवै जिस दोए आथ हुए ता मुगद सियाना भगत बिहुना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनों कृपा करे तिस प्रगट होए।

गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार, अगमय अगोचर कीमत नहीं पाए, ता मिली है जान ले मलाए, गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिया नीत, काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल, कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करतै करनी कर पाई, जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई, खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया, खरा खरा आया।

जा शब्द पछानिया अस्थर कीता मरन मन मानिया गुर किरपा ते नाम पछानिया गगन गंभीर गगन अंतर वास गुण गावै सुख सहज निवास गया न आवै आए न जाय गुर प्रसाद रह लिवलाई गगन अगम अनाथ अजूनी अस्थर चीत समाध सुगुनी हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी घर दर फिर था की बहु तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत धिया केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुरते मुक्त ना हुआ केती नार वर एक संभाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दह दिस ढूंढ कर मह पाया मेल भया सतगुरु मलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तलावे तोले गुरमुख आवे जाए न संग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाई चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कमल उर तारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिसै सब कोय चित है एक तही सुख होए चित वसै राचै हर नाय मुक्त भया पत स्यो घर जाए सीजै दे खुलै एक गंड छिया नित देखो जग हंड धूप शाम जे सम कर जान बंधन काट मुक्त घर आण छाया शूशी जगत भुलाना

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

समावै निर्मल सूचे साचो पावै गुरसागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साची अखोट गुर कहया साकार कमावहु गुर की करनी काहे तावहु नानक गुरमत साच समावहु टूटे नेहो के बोलह सही टूटे बाहां दुहू दिस गही टूट परीत गई बुर बोल दुर्मत पर हर छाडी ढोल टूटे गंठ पड़े विचार गुर शब्दी घर कारज सार लाहा साच न आवे टोटा त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाको मनुआ राखो ठाई ठहक मुई अब गुण पछताई ठाकुर एक सबाई नार बहुते वेश करे कूड़ियार पर घर जाती ठाक रहाई महल बलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार दाहपन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरप मुई घर आपने दीठी कंत सुजान दर राख्या गुरे आपने निरपहु नाम बखान डूंगर वास तिखा कनी जब देखा नहीं दूर तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आखे सब कोई जय भावे तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा नवारे सोई टंडोलत टूंडत हौ फिरी तह तह पवन करार भारे तहते तह पई हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिली तिनकै हौ बल जाऊ तिनकी धूड़ अकुली है संगत मेल मलाऊ मन दिया गुर आपने पाया निर्मल नाव जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहारे जाऊ जो असारे सो ढासी तिस बिन अवर ना कोई गुर प्रसादी तिस सम्मला ता तन दुख ना होए ना को मेरा किस गही ना को हुआ ना होगा आवन जानव गुची है दुबदा व्यापे रोग नाम मिहुने आदमी कलर कंद ग्रंत बिन नावे क्यों छूटी है जायर सातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है।

सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार जह देखा तह एक तू अंत ना पारावार थान थनंतर रव रहया गुर शब्दी विचार अणमंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखना।

दालद भंजन दुख दलन गुरमुख ज्ञान ध्यान धन गया बह चूरी है धन मह चीत गवार धन विरली सच संचया निर्मल नाम प्यार धन गया ता जान दे जे राचह रंग एक मन दी जय सिर सौंपी है पी करते की टेक धंधा धावत रह गए मन मह शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पए पेते गुरु गोविंद बन बन फिरती ढूंढती बसत रही घर बार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार नाना करत ना छूटी है विण गुर जमपुर जाही ना तिस एहो ना ओहो है अवगुण फिर पछताही ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान विण नावै निरभउ कहां क्या जाना अभमान थाक रही केव अपना हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगले किस पह करी पुकार नानक प्रियो प्रियो जे करी मेले मेलन हार जिन विछोड़ी सो मेल सी गुर कै हेत अपार पाप बुरा पापी कहो प्यारा पाप लदे पापे पासारा पर हर पाप पछाणे आप।

पर मोए माया किसे ना साथ, हंस चले उठ डुम्मण माया भूली आथ, मन झूठा जम जोहया अवगुण चले नाल, मन मह मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल, मेरी मेरी कर मोए विणनावे दुख पाल, गण मंदर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण, नानक सच्चे नाम।

अपना तन मन आगै देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण चुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमाव है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजह गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय भावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचे नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होआ प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिय धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणै आपना खूलै बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौमै खपै खपाए सी बीजो वथ बेकार जंत उपाए विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईसर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौं हौं करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर ना सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे जिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुरे अपने जिन हिरदय दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लह राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई गुरमुख बूझै आप पछाणै सच्चे सच समाई दुनिया सागर दुत्तर कही है
क्यों कर पाइए पारू, चरपट बोले औदू नानक, देहो सच्चा बीचारू, आपे आखे आपे समझे, तिस क्या उत्तर दीजे, साच कहो तुम पार जरामी, तुझ क्या बैसन दीजे, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरिये, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाई, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी।

इहो मन चल तो सच कर बैसै, नानक नाम आधारू आपे मेल मलाई करता लागे साच प्यारू। हाटी बाटी रह निराली रूख बिरख उदयानी, कंद मूल आहारू खाइय औदू बोलै ज्ञानी। तीरथ नहाइय सुख फल पाइय मैल न लागे काई, गोरख भूत लहारी पा बोलै जोग जुगत बिद साई। हाटी बाटी नींद ना आवे पर घर चेतना डुलाई, बिन नावे मन टेक ना टिकई नानक भूख ना जाई। हाट पटन घर गुरु दिखाया सहजे सच वपारो, खंडत निंदरा अल्प आहारम नानक तत् बिचारू। दर्शन भेख करो जोगिंदरा मुंदरा झोली खिंथा, बारह अंतर एक सरेव हो खट दर्शन एक पंथा। इन बिद मन समझाइए पुरखा बहुड़ चोट ना खाइए, नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाइए। अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हौमै ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारे गुर कै शब्द सो समझ परी। हिंथा झोली भरपुर रहया नानक तारे एक हरी, साचा साहिब साची नाई परखे गुर की बात खरी। ऊंदो खप्पर पांच भू टोपी, काया कड़ासन मन जा गोटी, सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम संभाल। कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता, कमन सो अंतर बाहर जुगता, कमन सो आवे कमन सो जाई, कमन सो त्रे भवन रहे आसमाई। कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सह आवे जाई। नानक गुरमुख साच समाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा। यो तत् बिचारै सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुर मिले अंधेरा जाई। नानक हौं मैं मेक समाई, सुन निरंतर दीजै बंद, उड्डै ना हंसा पड़ै ना कंद। सहज गुफा कर जाणै साचा, नानक साचे भावै साचा। किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी। किस वखर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी। गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वखर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी। चित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया। कित बिद आसा मनसा खाई,

आवै गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियलि सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियलि घट घट साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म विस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईए साचै शब्द समाए लिया एक कौ सच एका जाने हौ मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किछ सूझै।

गुर कै शब्द सो मुक्त भया, नानक तारे तारनहारा, हौं मैं दूजा पर हरिया, मन मुख भूलै जम की कान।

नानक साचर ते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावै, गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावै, गुरमुख निर्मल हर गुण गावै, गुरमुख पवित्र परम पद पावै, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, नानक गुरमुख साच समावै, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै करियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपियै अंतर प्यार, गुरमुख पाईऐ शब्द अचार, शब्द भेद जाणै जानाई, नानक होमै जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाई, साच रतो पत स्यों घर जाय, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर विद जानै, गुरमुख परविरत नरविरत पछाणै, गुरमुख तारी पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते होमै जाए, नाम रते सच रही समाए, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रिभवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावै बोलै सब वेकार, नानक नाम रते तिनको जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाय, जोग जुगत सच रह समाय, बारह मह जोगी परमाए, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मोख द्वार, बिन शब्दै सब दूजै लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया उर धार, गुरमुख रतन लह लिवलाय, गुरमुख परखै रतन सुभाय, गुरमुख साची कार कमाय, गुरमुख साचे मन पतियाय, गुरमुख अलख लखाए तिस भावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख भउ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराई, नानक गुरमुख मेल मलाई, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई, बिन गुर

अनहत सुन कहां ते होई, अनहत सुन रत्ती सी कैसी, जिस ते उपजे तिस ही जैसी, कोई जन्म ना मरहे ना आवह जाही, नानक गुरमुख मन समझाही, नौ सरस भार दसवें पूरी, तह अनहत सुन बजावह तूरी, साचे राचे देख हजूरे, घट घट साच रहिया भरपूरे, गुप्ती बाणी प्रगट होए, नानक परख लए सच सोए, सहज भाए मिलिए सुख होवे, गुरमुख जागे नींद ना सोवे, सुन शब्द अपरंपर तारे, कहते मुक्त शब्द निस्तारे, गुर की दीखिया से सच राते, नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते, कबुद्ध चुआवे सो के तठाई, क्यों तत न बूझे चोटा खाए, जम दरबाते कोई न राखे, बिन शब्द नाही पत साखे, क्यों कर बूझे पावे पार, नानक मन मुख ना बुझे गवार, कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार, सतगुर भेटे मुख द्वार, तत ना चीने मन मुख जल जाए, दुर्मत विछड़ चोटा खाए, माने हुक्म सबे गुण ज्ञान, नानक दरगाह पावे मान, साच वखर धन पल्ले होए, आप तरे तारे पी सोए, सहज रत्ता बूझे पत होए, ताकी कीमत करे ना कोई, जह देखा तह रहे आसमाय, नानक पार परे सच पाई, सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिये भवजल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिये, तिस कहो कवन अधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर लख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपनी मन समझाई, गुरमुख शब्दे सच लिव लागे, कर नगरी मेल मलाई, आपे दाना आपे बीना, पूरे भाग समाई, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जह देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकाल कला धर सोई, नदर करे शब्द घट मह वसे, विचों भरम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नामो मन वसाए, शब्द गुरु भव सागर तरिए, इत उत एको जाने, जेहन वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणे, त्रै सत अंगुल वाई औदू, सुन सच आहारु, गुरमुख बोले तत बिरोले, चीने अलाखे अपारु, त्रै गुण मेटे शब्द वसाई, ता मन चूके अहंकारु,

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाई मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुंदहा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्तासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवै तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै क्यों सस कर सूर समावै गुरमुख होमै विचों खोवै तव नानक सहज समावै इहो मन निश्चल हिरदै बसियली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द ल

सच सफाखे सच रपै रंग कबहू ना जावे जा एहो हिरदा देह ना होती तो मन कैठे रहता नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रक्त बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रह तो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना हो तो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरे है दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारे हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होए बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हो मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाणै नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्दै कान बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई।

सहसा गया बलाय, ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाय। अम्ब है सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाय। नानक गुरु।

कोई, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। महला तीजा, क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी, हऊ मैं छड्डै ना कोई, गुर प्रसादी हऊ मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै, तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा, जीवत मरना सब को कहै, जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे दारू भाउ लाए, अन दिन गुण गावै सुख सहजे, बिख भउ जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ जा कौ नदर करी पौड़ी, दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा। पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बिचारा, सब किश तेरा खेल है सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। सलोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नू फिरै तपा सदावै। परमे भूला सब तीर्थ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मोखंतर पावै। महला तीजा, सो तपा जे इहो तप काले, सतगुर नो मिलै शब्द संभाले। सतगुर की सेवा इहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावै मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन संसार की वर्तन, गुरमति घट चानना अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिण, सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भण। शब्दे ही सोजी पई सच्चै आप बुझाई। सलोक महला तीजा, अभ्यागत ए नाया खियन, जिनके चित में भरम तिस दै दित्तै नानका। तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई, महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने बहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन। पौड़ी, अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव। सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

ज्यों बैसंतर धात सुध होए त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए महला तीजा। राम कली राम मन वसिया तां बनिया शिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया तां सौंपिया भगत भंडार।

उतरै कोई कड्डो एहो विचार। सतगुर मिले ता नाम दड़ाई सब किल वेख कटन हार। नाम जपे नामो आरादी तिस जन को करहो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी। तुद जेवन दाता नाही किसे आख सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाई है। रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है। जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है। घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसे प्याई। श्लोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जे सतगुरु भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन। सच्चै लाए सच लगे सदा सच समालेन। नानक आए से परवान पहे जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन। ओए भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कसत कमावंदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहत सब कीती। एक कूड़ को सत लायन मनमुख वे गूती। गुरमुख सदा ते आई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है इन वात सुपीती। नानक नाम ते आई है सच सिफत सुनाई। श्लोक महला पहला सती पाप कर सत कमाही। गुर दीखिया घर देवन जाहि। स्त्री पुरख है खटिया भाव भावै आवो भावै जाओ। शास्त्र वेद न माने कोई आपो आपै पूजा होए। काजी होए कै बह न्याई फेरे तस्बी करे खुदाई। बड्डी लै कै हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाई। तुरक मंत्र कन हृदय समाहि। लोक महावह चाड़ी खाए चौंका दे कै सुचा होए। ऐसा हिंदू वेखो कोए जोगी गृही जटा बेभूत। आगे पाछे रोवह पूत जोग न पाया जुगत गवाई। कित कारण सिर शाही पाई।

घर हिंदू आवै सूत जनेऊ पढ़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता धूता थाए ना पाई मुसलमान करे वडियाई बिन गुर पीरै को थाए ना पाई राह दसाए उथे को जाए करनी बाजो किस्त ना पाए जोगी कै घर जुगत दसाई।

सो जाए सियान है, होर पकड़ हिंदू मुसलमान है, सबना का दर लेखा होए, करनी बाज हो तरे ना कोई, सचो सच बखाने कोई, नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना, हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिर है, ना सत मूंड मंडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिर है, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहू चर है, जिस हथ सिद्ध देवे जे सोई, जिसनो दे तिसे आए मिले, नानक ताको मिले बढ़ाई, जिस घट भीतर शब्द रवे, सब घट मेरे हो सब ना अंदर, जिसे खवाई तिस कौन कह, जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन, जिसे पलाई पंद सिर किसे दिखावे कौन। महला पहला, सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे।

संताप औ हट पट्टण में है भी क्या करे सो अवतूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्द करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंध बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाली काया की अगन ब्रह्म पर जाली सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खुहु केहु संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी करना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता हुसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपे।

इंद्र रो आया, परशुराम रो वह घर आया, अजय सुरो वह भीख्या खाई, ऐसी दरगाह मिले सजाई, रोए राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोए दह सिर लंक गवाई, जिन सीता आंधी डौरू वाई, रोए है पांडव पय मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर, रोए जनमेजा खोए गया, एकी कारण पापी पया, रोए है शेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़, रोवे है राजे कान पड़ाए, कर कर मांग है भीख्या जाए, रोवे है किरपन संच है धन जाए, पंडित रोवे है ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेख लाए, महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है, अवर कारा सब बाद, नानक मन्या मन्नी है, बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी, काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया, गुण गावे गुण उच्चरै गुण माहि समाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया, सब किछ आपे आप है आपे दे वड़ियाई, श्लोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै रत्ना

गुथली रतनी खोली आई वखर तै बणजारिया दुहां रही समाई जिन गुण पल्लै नानका माणिक वणजह से रतना सार ना जाननी अंधे बतह लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवै गुप्त रखीजै बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुलीजै अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनीजै तित घट अंतर चानना कर भगत मिलीजै।

दूजे पाए बोले, दूजे पाए सदा दुख है, नित नीर बरोले, गुरमुख नाम ते आई है, मत तातक डोले, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोले, आपे परम भुलाए दा, किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा नानक।

सुई धागा गंढै माह पाख केहो चलै नाही घड़ी मोहत किश हंडै सच पराणा हुवै नाही सीता कदे ना पाटै नानक साहिब सचो सच्चा किचर जापी जापै महला पहला सच की काती सच सब सार घाड़त तिसकी अपर

हुई ऐसा सज्जन लोड़ लहु जो मेले प्रीतम मोहे गुर पूरा मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड़ अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रखे कृपा तार रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनद बनोद किशु ना जानिए सर्व धार समरथ हो तिस कुर्बानी है गाय रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवा भीड़ो मोक लाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पात रखै आप सो पवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रदान जिसनो बल तरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलया सच मंत्र गुरमन तरै सलोक महला पंजवा धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रते रंग गोविंद कै हौ तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुर पूरै मेलाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सज्जनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती भन्नण घड़न समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ।
हर इक सहदी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक धर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवां मन मुखा केरी दोस्ती

तिचर रखण गांड जित दिन किश ना होवई तित दिन बोलण गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता तोह कुटे क्या फल पावे हंसां विच बैठा बग न बणी नित बैठा मच्छी नो तार लावे जां हंस सुभा विचार।

सत्तर सत्तर समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निर्भउ सो भई।

तेरा नाम सतगुर पाए पै मन तन अंतर वस दुखा नास होए हाथ दे आप रख व्यापै भौ ना कोई।

संता संग विहावे तुद हो भुले से जम जम मरदे तिन कदे ना चुकन हावे महला पंजवा सतगुर सिमरो अपना काट अंकट काट काट।

आई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाई पौड़ी ना तू आवे वस बहुत कणावणे ना तू आवे वस बेद पढ़ावणे ना तू आवे वस

आवह वस बहुता दान दे सब को तेरा वस अगम अगोचरा तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। स्लोक

रस खाएन, नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मटाएन। महला पंजवा, हुक्म उचलै हुक्मे रहै, हुक्मे दुख सुख सम कर सहै, हुक्मे नाम जपै दिन रात।

भोग हरख आनंद हुक्मी जपे निरोधर गुरमंत हुक्मी आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार ओह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवै कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो सच्चा यह सुआव। जन्म पदार्थ सफल होए मन में लायो पाव। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाय। नानक नाम जपत सुख उपजै दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवां नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणै जप तप संयम भाणै ही कढ ले। भाणै जून पवाई है भाणै बख्श करे। भाणै दुख सुख भोगी है भाणै कर्म करे। भाणै मिट्टी साज कै भाणै जोत तरे। भाणै भोग पगाए दा भाणै मनह करे। भाणै नरक सुरग अवतारी भाणै धरन परे। भाणै ही जिस भगती लाए नानक विरले हे पौड़ी। वडियाई सच्चे नाम की हों जीवा सुन सुने। पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणे। दिन सरहण तेरा नाऊ सदा सद जापी है। तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है। रोग सोग दुख वंजै जिस नाऊ मन वसै तिसह प्राप्त लाल। जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया। तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। सलोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया। रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी। हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवां सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पौलू है। हबे भस पणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी। जिस तू उठा चित तिस दर्द निवारणो। जिस तू उठा चित तिस कदे ना हारनो। जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो। जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो। जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो। जिसनो एको रंग भगत सो जानो।

ताहों सुख सखाली सुती जा गुरमिल सज्जन मैं लद्दा पौड़ी सबे दुख संताप जा तुदो भुली है जे की चन लाखे अपाव ता कहीं ना भुली है जिसनो विसरे नाउ सोने तन कांडी है जिसनो विसरे नाउ सो जोनी हांडी है जिस खसम ना आवे चेता तिस जम डांड दे जिस खसम ना आवी चेता रोगी से गणे जिस खसम ना आवी चेत सो खरो अहंकारिया सोई दोहेला जग जिन नाओ विसारिया सलोक महला पंजवा तैंदी बंदिश मैं कोई ना डिठा तू नानक मन भाणा कोल कमाई तिस मित्र विचोले जय मिलकंत पछाणा महला पंजवा पाव सहावे जा तौ तिर जुल दे सीस सुहावा चरनी मुख सहावा जा तौ जस गावे जियो पया तौ सरनी पौड़ी मिल नारी सतसंग मंगल गाविया घर का हुआ बंधान बहुड़ ना धाविया बिनती दुरमत दुरत सोए कूड़ाविया सीलवंत प्रधान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक एक रीत आविया मन दर्शन की प्यास चरण दसाविया शोभा बनी सिंगार खसम जान राविया मिलिया आए संजोग जान तिस पाविया।

तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कू सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमती आगंजत पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भाग।

अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरा वस तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर जिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक महला पंजवा सतड़े बाजार सोहन विच वपारिये वखर एक अपार नानक खटे सो धनी महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किसहु के नाही जिन एहो रचन रचाया तिस ही माहे समाहे पौड़ी सफले हो बिरख सुहावड़ा हर सफले अमृता मन लोचै उन मिलन को क्यों वंजै किता वरना चेहना बाहरा ओहो अगम अजिता ओहो प्यारा जी का जो खोले पिता सेवा करी तसाड़िया मैं दस्य हो मिता कुर्बानी वन्या वारने बले बल किता दसन संत प्यारिया सुनो लाए चिता जिस लिखिया नानक दास तिस नाओ अमृत सतगुर दिता। श्लोक महला पंजवा कबीर धरती साधके तस्कर बैसह गाहे धरती भार ना ब्यापई उनको लाहू लाहे। महला पंजवा कबीर चावल कारनी दुख को मोहली लाए संगत संगी बैसते तब पूछे धर्म राय पौड़ी आपे ही वड परवार आप एकातिया

विशाली धर्म राय है देवता लै गल्ला करे दलाली सतगुर आखे सत्या करे सा बात हुए दरहाली गुर अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्ले हुई जंगाली दर दरवेश खसम दे नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर क्याली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखे के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौण चिलक्योन उदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहि आप आपे सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब उम्र

क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देओ दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाओ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस पेओ रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध दोए किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

आई। जैसा मगहर तैसी कांसी, हम एक कर जानी। हम निर्धन ज्यो एहो धन पाया, मरते फूट गमानी। करै गमान चुभै तिस सूला, को काढ़न को नाही। अजै सो चोब को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई। कवन नर

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनित धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया जिसकी भाव भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटे जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहा उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदियले चक्र पुंगा पेटियले रायन संगा चूकियले मोह मै आसा सस कीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुल नीना तह बाजे अनहद बीना बकते बक शब्द सुनाया।

परमियले पंच जनास्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा वेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावोगो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावोगो बैरागी रामह गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल कह घर जाओगो रहाओ हिड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओगो चंद सूरज दुए सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देखना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिंह राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पंख बसे।

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तऊ ना पूजै छोड़ छोड़ रे।

होए कैसे, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कब है ना नासी, कहो रब दास सब है नहीं समझस, भूल

साखी जागी गुरमुख जानी उपजै ज्ञान दुर्मत सीजै अमृत रस गगनंतर पीजै एस कला जो जानै पियो भेटै तास परम गुरुदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रह सो कबहो ना सोए तीन तलोक समाध पलोवे बीज मंत्र।

गुर की साखी राखै चीत, मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत, कर पल्लव साखा बिचारी, अपना जन्म न जुऐ हारी, असुर नदी का बंधै मूल, पच्छम फेर चढ़ावै सूर, अजर जरै सो निचर चरै, जगन्नाथ स्यो गोष्ट करै, चौमुख जीवा ज्योत द्वार, पल्लू अनत मूल बिचकार, सर्ब कला ले आपे रहै, मन मानक रतना मह गुहै, मस्तक पदम द्वालै मणि, माही निरंजन त्रे पवन धनी, पंच शब्द निर्मायल बाजे, तुलके चवर संख कान गाजे।

जप एहन सुनाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ, हर हर नाम जप है आराध है, सेवक पाए खरे, किल बिख दोख गए सब नीकर, ज्यो पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गाव है, मुख बोल है नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में है, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्याव है, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे, कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, राम नाम रले, राम नाम जपियो गुरबचनी, हर तारी हर कृपले रहाऊ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले, उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरै स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेल हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे, ज्यों चंदन संग बसै निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे, हमरे अवगन बिखिया बिखै के, बहु बार बार निमखे, अवगन यारे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे, जिनको तुम हर राखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे, जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हर नखे, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीश्वर, हर त्यायो जन

पालक स्वामी हमरा खुह वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरेओ। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारेओ। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हौ बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम। तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानक को दया प्रव धारो। हम सेव है तुम जन पगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यों सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल पांच दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भये हर आपते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भये गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कल युग विति उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावै हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कवन योग कवन ज्ञान ध्याना कवन गुनी रीझावे, सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावे। साई मत साई बुद्ध सियानप जित निमखना प्रभ बिसरावे, संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावे। देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे, कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवे। नट नारायण महला पंजवां दुपदे

साध संग नानक परगासियो आन नाही रे बियो नट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी धीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हो मैं पीर रहाउ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई बीर खुले ब्रह्म पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर बिसम भय नानक जस गावत ठाकुर गुनी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आप है आप उधारियो आठ पैर जन कै संग बस्यो मन ते नाही बसारियो रहाउ वर्ण चेहन नाही किश पेखियो दास का कुल ना बेचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुपाए सुवारियो महा बिखम अग्न का सागर तिस ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहियो कोट अपराध मिट है खिन पीतर ताका दुख न रहियो रहाउ खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहियो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहियो कहत मुकत सुनते निस्तारी जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद पयो नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कर परम गत मोरी रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को मन बीतो प्रेम की खोरी जस गावत भगत रास उपजियो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना प्रीत ना कबहू थोरी नट महला पंजवा मेरे मन जप जप हर नारायण कबहू ना बिसरहो मन मेरे ते आठ पहर गुण गायन रहाउ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समाय।

है दह दिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिलिए परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवह जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने पी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नर सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींचै।

बिचारी सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारी जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना सम्हारी जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड़े पनेहारी साकत स्यों मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी साकत बचन बिशुआ ज्यो डसिए तज साकत परे परारी लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सुवारी गुर के बचन सत सत कर मानी मेरे ठाकुर बहुत प्यारे पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए फकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अतनीके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

फीका नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवै विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुशकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

जन मान प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

आप निस्तारे नाट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारे जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह कहो हर गुर मेल सवारे साकत कर्म पानी ज्यो मथिया नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारे मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन भारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन धीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देही गुर सत

सत संगत गुर निस्तारी, प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारी, मेर समेर मोर बहु नाचै, जब उनवै कन कन हारी, साकत को अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारी, ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारी, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले है पर उपकारी, संतै संत मिले मन बिगसै, ज्यो जल मिल कमल सवारी, लोभ लहर सब सुवान हलक है, हलकियो सबह बिगारी, मेरे ठाकुर कै दिबान खबर हुई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारी, राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो किरपा तारी, नानक मैं

साद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो हर

राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

लागा कमल प्रगास पया गुर पाया हर जप्यो ब्रह्म पौ भागा रहा पै पाए भगत लागो मेरा ही अरा मन सोयो गुरमत जागा किल बिख खीन भये शांत आई हर उर धार्यो वड भागा मन मुख रंग कसुंभ है कचुआ ज्यो कुसुम चार दिन चागा खिन मह बिन सजाए परतापै दंड धर्म राई का लागा सत संगत प्रीत साधे अत गूड़ी ज्यो रंग मजीत बहु लागा काया कापर चीर बहु फारे हर रंग नाल है सुभागा हर चारे हो रंग मिले गुर सोभा हर रंग चलू लै रंगा जन नानक तिनके चरण पखारे जो हर चरणी जन लागा माली घोड़ा महला चौथा मेरे मन भज हर हर नाम गोपाला मेरा मन तन लीन भया राम नामे मत गुरमत राम रसाला रहाऊ गुरमत नाम त्याइए हर हर मन जपिए हर जप माला जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्ब जंजाला तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला हम बारक किशु ना जान हूं हर मात पिता प्रतपाला पर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला माली गौड़ा महला चौथा मेरे मन हर भज सब किल बिख काट हर हर उर धार्यो गुर पूरै मेरा सीस कीजै गुर वाट रहाऊ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै तिस मन देवो कट काट हर साजन मेलियो गुर पूरै गुर बचन बिकानो हट हाट मकर पराग दान बहु किया शरीर दियो अध काट बिन हर नाम को मुक्त ना पावे बहु कंचन दीजै कट काट हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट त्रिकुटी फोर भरम पौ भागा लजपानी मटकी माट कलयुग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक

परे नदान पतत पावन नाम हरि कोट भगत उदार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण मह सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे कृख है बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग गर्ण मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदे माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहु अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा।

राम दुख बिनसे सुख कियो बिश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जां कै घर सगले समाहे तिस्ते बिरथा कोए नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाकै दीवान बे मोहताज नहीं किस कान सब किस करना अपने आप रे मन मेरे तू तां को जाप साध संगत को हों बलिहार जास मिल हुए उधार।

अवतार, हर सरने आयो दास तेरा, प्रभु ऊच अगम मरार, काड ले हो पौ जल बिखमते, जन नानक सद बलिहार, माली गौड़ा महला पंजवां, मन तन बस रहे गोपाल, दीन बांधव भगत वच्छल, सदा सदा कृपाल रहाव, आदि अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोई।

ना छोड़स किसन प्रीत ज्यो रे। पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम ना राच्य है एक हर हर चरण।

होकर पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौं दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

साहि बिन दर्शन कैसे रहो स्नेही। मारू महला पहला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई,

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारे एक भांति दोवें सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

सहसा तोड़े भरम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए। गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो। हम मैं जलिया मनो विसारी,

मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह बसाल है तह बैसा स्वामी

पुनः बख्शाए जियो, अब तू मार्ग पाए, हर की चरनी लाग रहा, विचो आप गुआई, मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याई।

आनंद दिन त्याई हर नाओ सतगुर कै बचन अराद तू आन दिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख को जानिए जा सतगुर दे।

जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे ध्रुव प्रहलाद बिदर दासी सोता गुरमुख नाम तरे रहाओ कलयुग नाम प्रधान पदारथ भगत जना उदरे नामा जय देव कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किल विख पाप टरे जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दुख पर हरे बेसवा रवत अजामल उदरेओ मुख बोले नारायण नर हरे नाम जपत उगर सैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे जन को आप अनुग्रह किया हरि अंगीकार करे सेवक पैज रखे मेरा गोविंद सरल परे उदरे जन नानक हर कृपा तारी उर धरियो नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाद जपियो लिवलाई साधक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादक रवया सरन परे जपयो ते पाई।

गण गंधर बे जपयो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपयो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाऊ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाईए कथ कहानी, संत जना मिल पाया। सुन अकथ कथा मन पाणी, मेरे मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी, बड़ भागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

पर हर का मन मानिया सो सेवक चौहो जुग चौहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई जियो हम अन दिन नाम लई करतारी।

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्प है सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरप है केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरप है आत डरप है धर्म राया सगल समगरी डर है ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरयो बदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनी।

नानक ओट हर की लीजै पुजा पसारे मारू महला पंजवां वेतन वेत भ्रम्यो बहु भांति अन

मान्यो भयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ सबरे हलत पलाता धन सेवक सफल ओहो आया जिन नानक खसम पछाता।

तिसको कबहु ना गाव सरी छोड़ जाए खिन पीतर ताको वा को फिर ताव सरी अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी बैरी संग रंग रस रचिया।

गुण भ्रम छूटा जो प्रभ भय सहाई मारू महला पंजवां अंतर जामी सब बिद जाने तिस ते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग लै जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाई करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पी।

कह तपत थम गल लाय रे नर काय पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लो

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह मनिया सुपाई।

परम मन का सतगुर सरणी जाय। कर्म जिस कौ तुरहुं लिखिया सोई कार कमाई। पाओ लागा गोबिंद सिंह काल पाई थाई। खेत मेरा जमिया नखुट न

दिसताना ब्रह्मचार ब्रह्मचज कीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कै तीर्थ भ्रम्यो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए रामदा।

माया रंग बिरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू।

को मात गर्भ में है जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकी चरण कमल उरे अंतर तारू बिठिया बन ते जियो उधारू।

सच मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता तृष्ण ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी।

न उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दुख अर बहुत सजाई तां की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिस को होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन जिस पावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काड नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिपत अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बड़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो रहाओ अवगत सिंह मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो एखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो निश्चल तिनका ठाणा गुरते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतुर।

ਕਰਨ ਭਜ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ ਕਰ

देखा, सिमर हर हर सदा नानक, तरे कई अनेक, मारू महला पंजवा, पतत पावन नाम जाको, अनाथ को है नाथ, महा भोजन माहि तुलहो, जाको लिखियो माथ, डूबे नाम बिन घन साथ, करण कारण चेतना आवे, देकर राखे हाथ, रहाउ साध संगत गुण उचा।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला।

साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

कछु नहीं। गुरपुरै पूरी मत कीन रहाओ, अवगण सुपर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

रहै सुख नहीं, गाढ़े लादे शार, विछड़िया मेला नहीं, दुख घणो जम द्वार, अगे क्या जाना नाही, मैं भूले तू समझाए, भूले मार्ग जो दसे,

ताच पठायो लेख मुख तमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुद पावे तू मन वसै नदरी कर्म वसेख भूख प्यासो जे

सच कार कमाई है विचड़िया कहो मेल लय गुर कहो बल जाई है लाले गोले मत खरी गुर की मत नीकी साची सुरत सुहावनी मन मुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरक तुरकी सच है बैसन उठना सच भोजन भाखिया कित सचै बितो सचा साचा रस चाखिया साचै घर साचै रखी गुर बचन सुभाखिया मन मुख कौ आलस घणो हाथे ओ जाड़ी हाथा चुगै नित चोगड़ी लग बंध बिगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज ताड़ी अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी बिन साचे जीओ जल बलो।

नानक नाम रते से निर्मले साच रहे समाई मारू महला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर एहो मन अवगण बांधिया सहो दे शरीर पूरे गुर बख्शाई है सब गुनहा फकीर क्यों रही है उठ चलना बुझ शब्द बिच।

चलना मुख अमृत नाम मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मिल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देखै सोई जिनकी आसु मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी तिस खावे गुर सागर सत सेवी।

पिंड करी अंतर गर्भ उर्ध लिव लागी सो प्रभ सारी दात करी संसार पवजल क्यों तरै गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

हरि तू दाता दयाल सबै सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ लै जग जन्मिया शिव शक्ति घर वास धरी।

पाई बिन सतगुर पल्ले ना पाई। सतगुर कै पहण मन वसै ता एहनस रह लिवलाई। राजंग रंगंग रूपंग।

देव दृष्ट जागे परम चुकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै

सखा बंदप अंतर जामी जान रहाव संसार सागर जिन उपायु शरण प्रभु की गही गुर प्रसादी प्रभ आरादी जम कंकर किशना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखनहार दुख दर्द कलेश बिनसह जिस बसह मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्वस संतना की रास।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है।

शंका मान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाए चरण सरन सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाउ नानक पए प्रभ किरपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब।

आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरै मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखै संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलियो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपा।

ग्रह चिंता जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सोहेला पाली है ग्रह राज मह नरक उदास करोदा बहु विध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता जिस जन की पूर्ण काली है जागत सूता परम भगूता बिन गुर मुक्त न होइए मीता साध संग टुट है हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भओ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लाव है तित तित लगना।

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत भया उठ चले ज्यो ज्यो औध बिहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिर जनहारे लेखा मंगे बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जाटो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेख सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खाते अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पया देश लम्मे।

भय देवानी शब्द सहज रस अंतर मानी आपे मुकत तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है आप निरालम गुरगम ज्ञाना।

साहिब सबना सिर भाए मिले भौ जाई हे भूले चूके मार्ग पावह आप भलाए तू है समझावह।

क्या जम्मण मरना, गुर के समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल बिगास हरे सरस पर,

कारी खेल तमाशा तुंदू कारी बाजी खेल गए बाजीगर ज्यो निस सुपन पखलाई है तिनको तख्त मिली बड़ियाई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी त्रे भवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा साचे साचे तख्त बढ़ाई हम मैं गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जीए क्यों सुख पावे दुए तीए निर्मल एक निरंजन दाता गुरपूरे ते पत पाई है जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहया मन राता तिसकी ओट गही सुख पाया मन तन मैल ना काई है जीवर सायन साचे राती हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मलाई है रख रख पैर तरे पौ तरना जत कत देखो तेरी सरना दुख सुख देह तू है मन भाव है।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाणै मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ पर यदि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे तरनी।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते भी।

शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पति जय अलख अपेवा भगता का गुणकारी करता बख्श लय वड्याई है देंदे तोहट न आवे साचे लै लै मुकर पौंदे काचे मूल न बूझ साच नारीजह दूजह परम पलाई हे गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

तन तन अर्प मिलै जग जीवन, हर स्यों बणत बनाई। प्रभ की गत मिट कोई ना पावै, जे को वड्डा कहाए वडाई खावै। साके साहेब तोट ना दाती।

आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप रिदै त्याई हे। छोड़ो हो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हउमै, दोह मार्ग पचह पचाई हे। छोड़ो हो निंदा तात पराई, पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई हे। छोड़ हो काम क्रोध बुरियाई, हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो, यूं तरिये पव जल पाई हे। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला, तिथे अवर न कोई जियो अकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी, पड़ दज्ज है।

एकहु कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी त्यों पव जल पार लंघाई है देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैसे है तख्त।

कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजे पहने रली करीजे, बिन अब भगती बाद मरीजे।

शब्द कर जान किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजे न कोई साच शब्द पेंज है पत होई आपे बख्श लए किस पावे हम मैं गर्भ निवाराई गुर कृपा ते हुक्म पछाणे।

जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे।

नाही। हर अगम अगाह अगाध निराला, हर अंत न पाइये गुरु गोपाला। सतगुर मत तारे तार नहारा, मेल लए रंग लीना। सतगुर बाज हो।

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप में गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की कहते सो पाई है सतगुर बाजो हो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे तार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

मुखर ले चल्लुहु दर्शन पावहु सहज महल्लुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे यों समदर्शी चीनाही प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु इं आत्म रामै लीनाही नारद सारद सेवक तेरे

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुखे अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जमदारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। पिर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर पिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह

अगन बिख चाला अपथ पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा बुरिया राही मस्तक भार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजे पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद ताना नाम जपो सुख साराही सतगुर तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गढ़ई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रले तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो हो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह।

राम जपो हो अंतरगत ध्याने, लालच छोड़ रचो हो अपरंपर। यूं पावो मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरिया जम जोहन लागे। सब सुख जाहे दुखा पुन्य आगे, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ लावहो हर गुण गावहो तत विचारहो हर लिव लावहो।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइय शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

ताकत कूड कपट महतेका अहन सनिंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे हो पार अफारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पवजल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई।

नेड़ ना आवे मनसु प्रभे अपरे अपाराही गुरते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकाराही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाता दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारही हम मैं ममता कर दायाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकाराही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हाराही हर गुरु पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती नानक राम नाम माते उत्तम।

गुप्त रहता ही। चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझे शब्द नराला। साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, दिन मह पांच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हूं मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मुहे घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पीहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै,

ताही साकत फांसी पड़े अकेला जमवस किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त ना सूझे आज काल पच जाता ही सतगुर बाज ना बेली कोई एथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देव है कर कृपा यूं सलले सरल मलाता ही भूले सिख गुरु समझाई उजड़ जांदे मार्ग पाई इस गुर सेव सदा दिन राती दुख भंजन संग सखाता ही गुर की भगत करह क्या प्राणी ब्रह्म इंद्र महेश ना जानी सतगुर अलख कहो क्यों लखिए जिस बख्शे तिसह पछाता ही अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सुबाई।

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

अंत ना जानी जा को अलख लखाई आपी अकथ कथा बुद्धता हाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर सहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

है, राम नाम घट अंतर पूजा, अवरना दूजा काहा है, ओढ़ना कथन है सिफत सजाई, ज्यों तुद भाव है रह रजाई, दरगाह पहंदी जान सुहेले, हुक्म सच्चे पातशाहे, क्या कहिए गुण कथ है कनेरे, अंत ना पाव है बड़े बड़ेरे, नानक साच मिले पत राख हो, तू सिर शाह पातशाहे, मारू महला पहला दखनी, काया नगर नगर गाड़े अंदर।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएंदा आद निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एकंकार वसै मन भावै

जाने जो किछ करे सो आपन पाणे लख 84 जी अपाई पाणे सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाई रोवे नाम।

सब कोई, गुर बिन सोजी किन ना होई, साच मिले सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस

तुझ ते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रहन ना चंद ना सूरज सुन।

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना

हुक्मे धरती तौल सिर भारण हुक्मे पौन पानी गहनारण हुक्मे शिव शक्ति घर वासा हुक्मे खेल खलाइंदा हुक्मे आडाणे आगासी हुक्मे जल थल त्रे पवन वासी हुक्मे साहस ग्रास सदा फुन

सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई, इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुनो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, इत सत सर मनुआ गुरमुख नावै।

पवन सारे सुन्ने लख पार नरालम सुन्ने ताड़ी लाए दा सुनो धरते आकाश पाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रे पवन साज मेखली माया आप उपाय खपाए दा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत्पुज चलत किया सिर करतै विस्माद शब्द देखाएंदा सुनो रात दिन सदोह किए उपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर हतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख मा

दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दास अवतारा शिष्ट उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझै रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रत्ते हर रस मतवाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरा भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा

कुल निरंजन गाया हूं मैं अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिय अकल गाए जमते क्या डरिय।

सरना सच गुर शब्द जित लग तरना कथ कथ देख अपरंपर हुन गर्भ ना जो नी जाया सच बिन सत संतोख ना पावे बिन गुर मुक्त न आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन भवजल जाए ना तरिया यो समुंद अथाह महा बिख भरिया।

चलह अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त भये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर्धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत ले हो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया।

हर जप अकुल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत यगन निवार समाई, मन मुख नाम जपो जग जीवन, हृदय अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूजै शब्द पतीजै, उस्तत निंदा किस की कीजै, जिन्हों आप जपो जगदीसर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मांड खंड सो जानो, गुरमुख बूजो शब्द पछाणो, कट कट भोगे भोगण हारा, रह अतीत सबाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, सरवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगा।

नानक गुरमत सो पाया, अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरपहो गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अनंत नाम।

नाम रतन पाया। मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

लाए सोई बूझै पौ परम शरीरों जाई हे। आपे गुरमुख आपे देवै सच्चै शब्द सत

तृष्णा यज्ञ जल है संसारा, जल जल खपै बहुत विकारा, मन मुख ठौर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई हे, सतगुर सेवन से वड भागी, साचे नाम सदा निबलागी, अंतर नाम रव्या निह केवल, तृष्णा शब्द बुझाई हे, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरलै किने पछाणी, सच्चा शब्द रत्ते बैरागी, आवण जान रहाई हे, शब्द बुझै सो मैल चुकाई, निर्मल नाम वसै मन आई, सतगुर अपना सद ही सेवह, हम मैं विचों जाई हे, गुरते बूझै तां दर सूझै, नाम मिहूणा कथ कथ लूझै, सतगुर सेवे की वडियाई, तृष्णा भूख गवाई हे, आपे आप मिलै तां बूझै, ज्ञान मिहूणा किशु ना सूझै, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई हे, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटै तुर फुरमाया, सत संगत मह तिन्ही वासा, जिनको तुर लिख पाई।

बार तृष्णा अग्न निवारी शब्द कीन सुख होई है। काया कुटंब मोह ना बुझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे। एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी। हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस नान दान करह नहीं बूझै,

मेहरवान मधसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई से वडभागी जिनी एको जाता घट घट वस रहा जग जीवन दाता एक थै गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख ब्रह्म पौ जाई है गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू देहे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है मारू महला तीजा सच सलाही गैर गंभीर है सब जग है तिस ही कह चीर है सब कट भोगवै सदा दिन राती

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हौ तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावे अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना

सब सच दिखाया, सच्चै नाम निवासी हे, ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया, हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै, चीनै शब्द अबनासी हे, काम क्रोध भरे हमें अपराधी, क्या मुँह लै बोल है, ना हम गुण ना सेवा साधी।

आपे बख्श लह सुख पाए सद ही नाम नवासी है। एहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज व्यापारा सच

जम काल घड़ी मोहत निहाली अन दिन हार जासी जाय अंतर लोभ करे नहीं बूझे श्री ऊपर जम काल ना सूझे ऐथे कमाणा सो अगे आया अंत काल क्या की जाय जो सच लागे तिन साची सोए दूजे लागे मन मुख रोए दोहा सिरिया का खसम है आपे आपे गुण मह पी जय ही गुर कै शब्द सदा जन सो है नाम रसायन इहो मन मोह है माया मोह मैल पतंग ना लागे गुरमति हर नाम पी जय ही सबना विच वरत है एक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई हौ मैं मार सदा सुख पाया नाए साचै अमृत पी जाहि किल बिख दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा सब किसे आपे आप वरतै गुरमुख तन मन पी जाहि माया अग्न जलै संसारी गुरमुख निवारै शब्द विचारी अंतर शांत सदा सुख पाया गुरमति नाम लीजै ही इंद्र इंद्रासन बैठे जम का भौ पावे है जम ना छोड़ै बहु कर्म कमावे है सतगुर भेटै ता मुक्त पाईऐ हर हर रसना पीजै ही मनमुख अंतर भगत ना होई गुरमुख भगत

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब

सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है सीजन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे भाणे आप मलाए सतगुर राखे से जन उबरे होर माया मोह खुआरी है गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी है हम मैं मेरा दूजा पाया किसना चल तुर खसम लिख पाया।

तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जीवन जिन अपनाया पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदै आपे लाई जिस

लह तोल। ज्यो भावै त्यों राखह रहना, गुरमुख एको जाताई। जातुद पाणा था सच्ची कारै लाई, अवगण छोड़ गुण माहि समाई। गुण मह एको निर्मल साचा, गुर कै शब्द पछाताई। जह देखा तह एको सोई, दूजी दुर्मत शब्द खोई। एक समह प्रभ एक समाना, अपने रंग सद राताई। काया कमल है कुमलाना, मनमुख शब्द ना बुझै एयाना। गुर प्रसादी काया खोजे, पाई जग जीवन दाताई। कोट गही के पाप निवारे, सदा हर जीओ राखै उर तारी।

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुग को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुख दाता ही। जह देखा तू सबनी थाई, पूरै गुर सब सोजी पाई। नामो नाम त्याई है सदा सा।

आई रत्न अमोलक अग में अपारा कीमत कमन करे विचारा गुर कै शब्दे तोलत लाई अंतर शब्द पछाताई सिमरत शास्त्र बहुत विस्थारा माया मोह पसरिया पासारा मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझ गुरमुख विरल जाताई आपे करता करे कराई सच्ची वाणी सच दृढ़ाई नानक नाम मिले वड्याई जुग जुग एको जाताई मारू महला तीजा सो सच सेवे हो सिरजनहारा शब्दे दुख निवारण हारा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई आपे अगम अथाहाई आपे सच्चा सच वरताई।

पाई, सच्ची भगति आपे लाई, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्म में काला हाही, गुरमुख वणज करह पर आप पछाण, एक सबिन को अवर

सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवै मन वसाई, जिन मन वसया से जन सो है, तिन सिर चूका काहाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुणदाता, लेखा कोई न मंगै ताहाई, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावह अलाखे अपेवा, जिनको नदर करह तू अपनी, गुरमुख

अपारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाण तावत राखे इकत कर आने नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग में वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावे है त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई सदा सदा तेरे गुण गावा सच्चे साहिब तेरे मन पावा नानक साच कह बेनंती सच देव हो सच समाहाई मारु महला तीजा सतगुर सेवन से वडभागी अन दिन साच नाम लिव लागी सदा सुखदाता रविया काट अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई।

आए बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा, बिन शब्द है कोई ना पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी, सो सच शब्दे लाहाई। दुख सुख करता तुर लिख पाया, दूजा भाव आप वरताया। गुरमुख होवे सो अलिप तो वरतै, मनमुख का क्या विसाहाई। से मनमुख जो शब्द ना पछाण है, गुर के पै की सार ना जान है। पै बिन क्यों निरभउ सच पाई है, जम काड लएगा साहाई। अफरियो जम मारिया न जाई, गुर कै शब्दे नेड़ न आई। शब्द सुने ता दूर हो भागे, मत मारे हर जियो वे परवाहाई। हर जियो की है सब सिरकारा, एहो जम क्या करे बेचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे, हुक्मे कटदा साहाई। गुरमुख साचै किया अकारा, गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझै, शब्द सचै सुख ताहाई। गुरमुख जाता कर्म विधाता, जुग चारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहाई। गुरमुख नाम शब्द सलाही, अगम अगोचर वे परवाही। एक नाम जुग चार उधारी, शब्दे नाम वसाहाई। गुरमुख शांत सदा सुख पाई, गुरमुख हृदय नाम वसाई। गुरमुख होवे सो नाम बूझे, काटे दुर्मत फाहाई। गुरमुख उपजै

काचन काची अगम अगोचर वे परवाह भगत वच्छल आथाहाई सतगुर पूरा साच दृढ़ाई सच्चै शब्द सदा गुण गाई गुणदाता वरतै सब अंतर सिर सिर लिख दासाई सदा हदूर गुरमुख जापै शब्दे सेवै सो जन त्रापै अन दिन सेवै सच्ची बाणी शब्द सच्चै ओ माहाई अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाई मन हथ कर्म फिर जोनी पाई बिख्या कारण लब लोभ कमावै दुर्मत का दुराही पूरा सतगुर भगत दृढ़ाई गुर कै शब्द हर नाम चित लाई मन तन हर व्या काट अंतर मन पीने भगत सलाहाई मेरा प्रभ साचा असुर संघारण गुर कै शब्द भगत निस्तारण मेरा प्रभ साचा सद ही साचा सिर शाह पातशाही से भगत सच्चे तेरे मन पाई दर कीर्तन करह गुर शब्द सुहाई।

शब्द निवारै, सतगुर सेव सदा सुख पाई, सील संतोख सब ताहाई, हम मैं मोह उपजै संसारा, सब जग बिन सै नाम वसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई, नाम सच्चा जग लाहाई, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिल वाजा वाया, सदा कार्य सच नाम सुहेला।

महा दुख भारी विस्तामाहि समाहाई। वेद पढ़ है पढ़ बाद बखान है काट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है। गुरमुख हो वै सो तत् बलोवे रसना हर रस ताहाई। तर वत छोड है बाहर तावे है मन मुख अंधे साधना पावे है। अन रस राती रसना फीकी बोले हर रस मूल ना ताहाई। मन मुख देही परम पतारू दुर्मत मरै

बैरागी निज करवासा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवे।

दुख पाए, मन ही मन है समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चै सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेखे थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेखे पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे।

सब साजी आपे थाप अथाप निवाजी आपे न्याओ करे सब साचा साचे साच मलाएंदा काया कोट है आकारा माया मोह पसरिया पासारा।

पथ दाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, तुदनो सेवह से तुझह संभावह, तू आपे मेल मलाएंदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पा।

अगम सलाही अगम अगोचर वे परवाही जे ही मत देहे सो हुए तू आपे शब्द बजाएंदा अन्न ने आरजा सिजदी जाए रहण

भौ भागा सदा आनंद सच्चे गुण गावह सच बाणी बोलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरा भाग गुर शब्द पछाता जात पात सच सच्चा सच सोई हम मैं मार मलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे भूला फिरे अभागा कर्म होवे ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाई मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्त

करता, ज्यो भावे तिवें चलाईंदा। सिमरत साहस्ते अंत न जाने, मूर्ख अंधा तत न पछाने। आपे करे कराई करता, आपे परम पलाईंदा।

पाई सब खेल तमाशा तेरी वडियाई आपे वेख करे सब साचा आपे पन कढ़ाएंदा बाजी गर एक बाजी पाई पूरे गुरते नदरी आई सदा अलिपत रह गुर शब्दी साचे स्यों चित लाएंदा बाजह बाजे तुन अकारा आप बजाए बजावन हारा कट कट पौन वह एक रंगी मिल पवन सब बजाएंदा करता करे सो निश्चो होवे गुर कै शब्दे हो मैं खोवे गुर प्रसादी किसे दे वडियाई नामो नाम त्याएंदा।

सतगुर सेवे सहज आनंदा फिर आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारिय है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिव लागी सचो सच कमावे सदही सच्चा मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच्चा

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा। हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आग्या मोह ना चूकै माया, अग्गै जम काल लेखा लेवै, ज्यो तिन कहानी पीड़ाएंदा। पूरै भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवै, महल सच्चै सुख पाएंदा। किन सुख पाया जो तुद पाए,

रतन सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चल दिया घर दर नजर न आवे जम दर बांदा दुख पाएंदा बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई ज्ञानी ध्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिले वडियाई दर सच्चे सोभा पाएंदा सतगुर नो सेवे तिसे आप मलाई ममता काट सच लिवलाई सदा सच बन जह वापारी ना मुहला पाएंदा आपे करे कराए करता शब्द मरे सोई जन मुक्ता नानक नाम वसै मन अंतर नामो नाम त्याईंदा मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया पाने विच को विरला आया पाणा मन्ने सो सुख पाई पाने विच सुख पाएंदा गुरमुख तेरा पाणा पावे सहजे ही सुख सच कमावे।

हर दिन हर सेवे हो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बले हार है जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं इनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावां जे हर प्रभ पावां अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग एहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिसे।

दूजै पाए परम पलाया, हरना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवै गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवै वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा।

त्रै गुण परसूत जमाया, चारी वेद ब्रह्मे नु फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुर बाणी वरती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े अनदिन वाद समाले, नाम ना चेते बद्दा जम काले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पलाएंदा, गुरमुख एक कस स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा

आई, हित रंग साचे माहे समाई, पूरे भाग को एहो रंग पाए, गुरमति रंग चढ़ाईंदा, मनमुख बहुत करे अपमान, दरगाह कब ही ना पावे मान, दूजे लागे जन्म गवाया, बिन बूझे दुख पाईंदा, मेरे प्रभ अंदर आप नकाया, गुर प्रसादी

आसमाई गुर प्रसादी पाया जाई आपे मेल मलाए आपे शब्दे सहज समाइंदा आपे सच्चा शब्द मलाई शब्दे विच्चो परम चुकाई।

रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला हा पाया।

मेरे पाया। जिसनो बजाए सोई बूझै, हर गुण गावे अंदर सूझै। हम मेरा ठाक रहाई, सहजे ही सच पाया। बिन कर्मा होर फिरै कनेरी, मर मर जम्मै चुकै ना फेरी। बिख का राता बिख कमावे, सुख ना कबू पाया। बहुते भेख करे भेख तारी, बिन शब्द हूं मैं किने ना मारी। जीवत मरे ता मुक्त पाई, सच्चै ना ए समाया। अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई, तिस दी बूझै जे गुर शब्द कमाई। तन मन सीतल क्रोध नवारी, हम मैं मार समाया।

राम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवे जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गत हुए।

हम अजाची हो दयाल कृपा कर हर जियो रख ले वो गुर सरनाई है अमृत रास सतगुरु चवाया।

तुर लिख पाई अन दिन गुरु गुर कर्तव्य हाई बिन सतगुरु को सी जय नाही गुर चरणी चित लाई हे जिस भावै।

ज्ञान रतन मन परगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुर को सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी।

सुवै गुरमुख नाम समाए समावे नानक नाम त्याई है भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आखव खाणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई है हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा करा हर जीव सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वसया निभलाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहया तटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिस ऐसरे वह प्राणी है जां को राखै हर राखन हारा ताको कोई ना साख समा

समाही सुकेते फुल हरिया कीतन हर त्यावो हो चोज वडाणी हे जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हो कुर्बान तिस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी हे जो जिया की सार ना जाने तिस स्यों किछ ना कहिए अजाने मूरख स्यों नह लूज पराणी हर जपिय पद निर्वाणी हे ना कर चिंत चिंता है करते हर देवै जल थल जनता सब तै अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखाणी हे ना कर आस मीत सुत पाई ना कर आस किसै सहा व्यवहार की पराई बिन हर नावै को बेली नाही हर जपिय सारंग पाणी हे अन दिन नाम जप हो बनवारी।

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जो शरण परै तिसकी पात राखै, जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै, गुर कै शब्द परम भउ भागै। विचे ग्रह सदा रह उदासी, ज्यों कमल रह।

बुझै तह करते हर अन देन नाम बखाणी हे। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का मैं हर बिन टेक धार अवर ना का।

संकट मटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वस हो घर अपने। लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा। जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसह त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले,

बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में है सोब सुहाई है, जय जयकार जपो जगदीस है, बल बल जाई प्रभ अपने ईस है, तिस बिन दूजा अवर ना दिस है, एका जगत सबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता।

सबे उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है मारू सोले महल्ला पंजवा।

ऐसा वणिज करहो ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म युग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हों कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख है तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊट सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया जिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचरना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हर कवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देखे बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन भीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच

बाप तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

सहज घर तेरा, हमयो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होए, देह दान सबसे जंत लोए, टूट न आवे पूर पंडारे, तृप्त रहे आगी जाहे, जाके है सिद्ध साधक बनवासी, जाके है जति सती सुखवासी।

जिस चीते आवह तिस भौ केहा हवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपूरे लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी हमें चोल चोल पी जाए। मरे नाही सद सद ही जीवे अमर भया बनासी थीवे। ना को आवे ना को जावे

सवाया नित नित रंगा कटै नाही तोली जाहि बारहा कंचन शुद्ध कराया नदर सराफ बन्नी सचड़ाया परख खजाना पाया सराफी

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

सिमरत घट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवै, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दाना है। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना है। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप बखानी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किस करे सो आपन पाने। साधु तूर जाचे हैं जान तेरे, नानक सद कुर्बाना है। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रव निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृत उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस कहो प्रव दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। कीता होवै तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। जिस आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिस बुझाएंदा। हरख सोग का नगर एहो किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया। त्रिहां गुणा ते रह निरारा, सो

सिमरहै घड़ी मूरत पल निमखा, सिमरहै काल अकाल सोच सोचा, सिमरहै सौन शास्त्र संजोगा, अलख न लखिए एक खिना, करण कराम नहार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, कर कृपा जिस भगती लाभ हो, जन्म पदार्थ सो जिना, जान कै मन बूठा प्रभ अपना, पूरे कर्म गुर का जप जपना, सर्व निरंतर सो प्रभ जाता, बहुड़ना जो नी परमुरुना, गुर का शब्द वसै मन जाके, दुख दर्द प्रमता का भागे, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना, सो तनवंता जिन प्रभ त्याया, सो पतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जाके मन बूठा, सो पूर कर्मा नाशिना, जल पल महियल स्वामी सोई, अवरमा कही है दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काटे ओ भ्रम सगला, अवरना दिसै एक बिना, ऊचे ते ऊचा दरबारा, कहन न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर अथाह स्वामी, अतुल न जाई क्या मिना, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवरना कोई बिया, आद मद अंत प्रभ तू है, सगल पसारा तुम तना, जम दूत तिस निकट न आवे, साध संग हर कीर्तन गावे, सगल मनोरथ ताके पूरन, जो सर्वणी प्रभ का जस सुना, तू सबना का सब को तेरा, साचे साहिब गहर गंभीरा, कहो नानक से ही जने उत्तम, जो भाव है स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा, प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेरवाना, हर दाता जी जंत पेखारी, जन बांच जा चंगना, मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो, गीर्ग रोग मिट है हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना, श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी, एका ओट तजो बिख कामी, निव निव पाए लगो दास तेरे, कर सो कृत नाही संगना, रसना गुण गावे हर तेरे, मिट है कमाते अब गुण मेरे, सिमर सिमर स्वामी मन जीवे, पांच दूत तज तंगना, चरण कमल जप बोहित चरिये, संत संग मिल सागर तरिये, अर्चा बंदन हर समत निवासी, बहुड़ जोन ना नंगना, दास दासन को कर ले हो गोपाला, कृपा निदान दीन दयाला, सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना, मन तन अर्प धरी हर आगे, जन्म जन्म का सोया जागे, जिसका सा सोई प्रतपालक, हत त्यागी हौ मैं हंतना, जल फल पूर्ण अंतर जामी, कट कट रव्या अशल स्वामी, परम पीत खोई गुरपूरे, एक रव्या सरबंगना, जत कत पेखो प्रभ सुख सागर, हर टोट भंडार नाही रतनागर, अगह अगाह किस मित नहीं पाई, सो बूझै जिस किरपंगना, छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी दंजा, कर गह काड लिए प्रभ अपने, हमें उतार दृश टंगना, एको एक रव्या सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाई, आद मादे अंत प्रभ रव्या, त्रिशन बुझी परमंगना, गुर परमेश्वर गुर गोबिंद, गुर करता गुर सद बख्शंद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना, जो पेखा सो सब किस स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी, जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत है तना, जाचक जाचै तुम्हें अरा।

दीता। कर्ण करावन सब तू है नाही किस असाड़ा। तुम है पठाए ता जग मह आई, जो तुझ पाणा से कर्म कमाई। तुझ ते बाहर किशु ना हुआ, ता भी नाही किस काड़ा। ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए, इहा हर जस तेरा भणिए। आपे लेख अलेख है आपे, तुम सियो नाही किस झाड़ा। तू पिता सब बार कथारे, ज्यो खलावे है त्यो खेलन हारे। उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही कोवे पाड़ा। एक बसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देश दसंतर। एक ही को कास एक ही को राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा। कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन संसारी कमन सो भगता। कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा। हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता। हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर धड़ा। सागर कीना आत तुम पारा, एक खड़े रसातल कर मनमुख गवारा। एक ना पार लंघावह आपे, सतगुर जिनका सच बेड़ा। कौतक काल एहो हुक्म पठाया, जी जंत उपाय समाया। वेखै विगसै सब रंग माणी, रचन कीना एक अखाड़ा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड दा तार वड्डी जिस जाई। अगम अगोचर बे अंत अतोला, है नाही किस आहाड़ा। कीमत कोई ना जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा। आप सो ज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अत गाड़ा। केतड़िया दिन गुप्त कहाया, केतड़िया दिन सुन समाया। केतड़िया दिन धुंधुकारा, आपे करता प्रगटड़ा। आपे शक्ति सबल कहाया, आपे सूरा अमर चलाया। आपे शिव वरताई नियंतर, आपे शीतल ठार गड़ा। जिसह नवाजे गुरमुख साजे, नाम वसै तिस अनहद वाजे। तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसह न आवै जम नेड़ा। कीमत तागद कही ना जाई, कहो नानक बे अंत गुसाई। आद मद अंत प्रभ सोई, हाथ तिसै कह निबेड़ा। तिसै शरीक नाही रे कोई, किस ही बुतै जवाब ना होई। नानक का प्रभ आपे आपे, कर कर वेखै चोज खड़ा। मारू महला पंजवा, अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी। मधसूदन दामोदर स्वामी, रिखी केस गोवर्धन तारी। मुरली मनोहर हर रंगा, मोहन माधव कृष्ण मरारे। जगदीश्वर हर जियो असुर संघारी, जग जीवन अबनासी ठाकुर। घट घट वासी है संगा, धरनी तर ईस नरसिंह नारायण। दाड़ा अगरे प्रथम तरायण, बावन रूप किया तुद करते। सब ही सेती है चंगा, श्री राम चंद जिस रूप नारे किया। बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया, सहस नेतर मूर्त है सहसा। एक दाता सब है मंगा, भगत वचल अनाथ है नाथे। गोपी नाथ सगल है साथे, वासुदेव नरंजन दाते। वर्ण ना साको गुण अंगा, मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण। द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण, कमला कंत करह कंतूहल। आनंद बनोदी निसंगा, मोग दर्शन आजूनी संभव। अकाल मूरत जिस कदे नाही खो। अवनासी अवगत अगोचर, सब किस तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी, मछ कछ कूरम आग्या अवतरासी। केशव चलत करह निराले, कीता लोड़ है सो होएगा।
निराहारी निरवैर समाया, धार खेल चतुर्भुज कहाया, सावल सुंदर रूप बनावह, बेण सुनत सब मोह है।

सत्संगा पीत पितंबर त्रिपवन तणी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठला मैं गणत न आवै सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिले जिसे आप मलाही आप हो कोहे ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गहू चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखाने सहस फनी सेख अंत न जाने नवतन नाम जपै दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जमदूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर रख हो साध संतन कह संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारपत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर ना मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदै सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत धरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिलै महमौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाल।

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारे, रंग रते तेरा।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद।

गीत पराणी काम क्रोध निंदा पर हरिय हर रसना नानक गावना जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती पूर्ण पूर रहे दिन राती जो जो जपै सोई बड़ भागी बहुड़ना जोनी पावना जिसनो बिसरै पुरख बधाता जलता फिरै रह नित ताता किरत कणै को रखै ना कोई नरक कोर मह पावना जियो प्राण तन धन जिन साजिया मात गर्भ मह राख निवाजिया किस स्यो प्रीत छाड़िया नराता काहू सिरै ना लावना तार अनग्रहो स्वामी मेरे कट कट वस है सबन कह नेरे हाथ हमारे कछु है नाही जिस जनाए है किसे जनावना जा कै मस्तक तुर लिख पाया किस ही पुरख ना व्यापै माया नानक दास सदा सरनाई दूसर लवै ना लावना आग्या दुख सुख सब कीने अमृत नाम बिरले ही कीने ता की कीमत कहन ना जाई जत कत ओही समावना सोई भगत सोई वडदाता सोई पूर्ण पुरख बधाता बाल सहाय सोई तेरा जो तेरे मन पावना मृत दुख सुख लिख पाए तिल नहीं बद है कट है ना कटाए सोई होए जे करते पावे कह कह आप मन्यावना अंध कूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा धार रखे कर अपने मिल साधु गोविंद त्यावना।

नानक बल बल जावना मारू वार महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला विण गाहक गुण वेचिय तो गुण सहगो जाए गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख बकाए गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माए समाए मोल अमोल ना पाई है बन जना लीजै हाथ नानक पूरा तोल है।

एक बांधे एक टीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डे वडार नानक मिलिया सो

गुर तीरक दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निह कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर सिउ बन आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर सिउ प्रीत उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन त्रिपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श लय आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मनमुख मूरखा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिरे ऊपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादे उबरे जिन हर रस चखा आप कराए करे आप आपे हर रख।

सहज वनस्पत फुल फल पवर वसै पह खंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जो जन लूज है मने सिउ से सूरे परदाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत नह जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग भवा कर कर भीख्या लेओ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोय ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोय किस सरनाई छूती है लेखा मंगे ना कोय सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओह शब्द दे हिरदय जिस दै सच है तन मन भी सच्चा होय नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड्याई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जाव है हत क्रोध स्यों लूज दे।